नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी

0: पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रदत्त इस जीवन में हमारा मन प्रधान है। वो हमारे वास्तविक विचारों की प्रतिमूर्ति है। मन निर्मल तो जीवन संयमित।

प्रभु नाम जपते जपते मन भूल जाता है संसार के बंधनों को। इस मगन मन से होते हैं असंभव कार्य भी संभव।

आस्था का ही अनोखा रूप है देशभक्ति। मातृभूमि की सेवा और उनके प्रति समर्पण की भावना ईश्वर भक्ति के समान ही संतोष देने वाली है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देशगान।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 250वां भाग। से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक भाग तीसरी। आप सुन सकते हैं कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम का समय सुबह 7 बजे का। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 7:30 से। 8 बजे से समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक, 9:30 से आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार खयाम पर। सुबह 10 बजे से सेल्युलॉयड के सितारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेगा। अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। कार्यक्रम रंग तरंग का समय 11 बजे का और 12 बजे से हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 बजे से सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से। 3 बजे से सखी सहेली, 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आज की मेहमान। इसमें आज सुनिए अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने और 6 बजे से हिंदी में समाचार। शाम 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 6:45 से सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। आज सुनिएगा तीसरी कड़ी। कलाकार हैं

पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग।

रात 8 बजे से हवा महल में सुनिए झल की अधूरी बात। लेखन वीएम आनंद का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। रात 8:15 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन सकते हैं चित्रलोक। 8:45 से समाचार संध्या। रात 9 बजे से कार्यक्रम आपके लिए। से आज के फनकार। आज रात ये आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता उत्पल दत्त पर। रात 10 बजे से छाया गीत। 10:30 से सुनिए ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 285वीं भाग।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला, तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें।
2: सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया थाप, हमारे बनारस घराने का जो थाप का एक
1: क्या बात,
2: ये जो तकाक का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू की तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल
1: जी।
2: और हमारे गुरु जी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय।
1: क्या बात,
2: और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए।
1: हाँ, इसीलिए मुझे याद आया किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है।
2: जी हाँ, जी हाँ,
1: कि तब भी बोला इसे कुछ बात जी, जी, है। हाँ, इसके बारे में
2: पखावज
1: बताइए
2: क्या है दास बाबू, कि पखावज को काट के

0: का निर्माण हुआ, और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरू साहब को,
1: अच्छा
0: हर म्यूजिक के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा, और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बजेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बजाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बूंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है, थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने के साथ,
1: नाच में ज्यादा थाप लगा,
0: नाच में, और अगर तबला प्लेयर तबला वादक सोलो बजा रहा है
1: अच्छा,
0: तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है, वो थाप के एक अंदाज होता है, ये भी थाप है हम
1: जी,
0: लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर, लेकिन जब सोलो बजाएंगे
1: क्या कहें,
0: लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया।
1: आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
0: आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूं। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई झपताल। दस मात्रे का ताल है और इसमें भी दो ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है कि रूपक ताल के तीन चार अलग अलग तालों का नाम है, तीन ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झपताल में दो ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक पर ताली, तीन पर ताली, आठ पर ताली और छह पे खाली है। और इसी का एक ताल का नाम है सुल ताल, सुलफाट ताल, वो भी दस मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूं श्रोता झपताल।
1: मैं इसमें और एक बात जानना
0: जी,
1: आपने सुलताल के जिक्र की,
0: हाँ।
1: सुलताल पखावज के लिए
0: जी, पखावज का बोल है वो,
1: और एक ताल होता है उसूले फाकता,
0: वही भाई है
1: वो, क्या लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बसता होगा?
0: नहीं, पखावज का ही है वो, धा अच्छा। धा देन,
1: और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल,
0: अमीर खुसरो साहब का है लेकिन वही पखावज के अंदाज से बना हुआ।
1: अच्छा,
0: धा धा दिन धा टीट धा टेटे धा तगदे के धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता, सुनिए दास बाबू प्रस्तुत है झपताल।

0: अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है
1: जी,
0: उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना ताल के
1: जी,
0: उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है
1: जी,
0: जिसको कहते हैं हम आमद।
1: अच्छा,
0: ताल में आने का अंदाज़।

इसको कहते हैं गमक। ये आपको ज्यादातर सरोद में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में जी, तो उन्होंने सुरबहार जो गमक, तो उसी का अंदाज है, बाएं का अंदाज है।

0: क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी।
1: क्या
0: पंडित
1: बात है?
0: कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है।
1: आपको मैं बता दूं दास बाबू, आपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर ऑन स्टेज। कुमार दादा, उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद हैं देखिए पूना में
0: जी,
1: उनका भी एक अंदाज है, तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो।
0: इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखा।
1: जी हाँ, जी हाँ, एकदम जरूर है।
0: उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य का समावेश बनारस के तबले में आया है।
1: जी
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपताल
0: जी,
1: हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है उसमें हम जरूर दिखाएंगे। दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है
0: जी।
1: आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपताल का एक बड़ा सुंदर गाना है।
0: अच्छा,
1: लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल श्रोताओं, महाकाल वंदन के इस अध्याय में आइए प्रातः वंदन करते हैं कालों के काल महाकाल का। आकाशे तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमस्तुते।

श्रोताओं, महाकाल वंदन का यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स और सुबह 10:00 सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सुबह 10:30 पर सुनिएगा सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा और सुबह 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती मुंबई से। दोपहर 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल, दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार रंग में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 सुनिए महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम आज के मेहमान और युववाणी युवा श्रोताओं का पसंद का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:00। सोशल मीडिया कमेंट पर आधारित श्रोताओं की फरमाइशों पर केंद्रित विशेष सेगमेंट। और शाम 6:00 समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का। शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे

के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम आपकी फरमाइश और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 11:10 से सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम विवरण। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: न संसनी, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज मैहर से लाड़ली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में 2000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये स्कीम अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि तथा पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा,
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। वैज्ञानिकों की मेधा बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर, दुबई समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया प्रदेश में लगभग 2000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गत दो वर्ष में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उद्यान के गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुख्यमंत्री निवास से गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुना जिले के कुंभराज धनिया को शीघ्र ही जीआई टैग प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। इससे कृषि कार्य को और किसान और आसान बनाने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त के रूप में 1,500 रुपए प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रुपए से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपए की संयुक्त राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवा विकसित भारत की आधारशिला है। उन्हें स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाना समय की मांग है। युवाओं को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप सजग और जागरूक बनाएं। राज्यपाल कल लोकभवन में शांतिपनी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन मूल्यों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पाथे न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के 2 मैचों से सिर्फ 1 अंतर है। उधर इंग्लैंड पूल ए में अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में जगह बना चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शब

आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अध्यक्षा बबीता चौहान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने कल हुई जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में जिले के विकसित वैध और अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कल हुई जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं सतना में जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने 107 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात श्रोताओं, जय श्री महाकाल। आकाशवाणी उज्जैन के FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूँ आपकी अपनी आवाज, आपकी रेडियो साथी प्रीति, और आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और कुछ नया करने का अवसर लेकर आती है, तो क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ की जाए। आज का थॉट ऑफ द डे है, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आइए शुरुआत करते हैं सुप्रभात उज्जैन के इस नए अध्याय की। आज की सुप्रभात उज्जैन के इस अंक में हम बात करेंगे उज्जैन के विकास गतिविधियों और नए प्रोजेक्ट्स की। इसके साथ ही समाचार पत्र में हम जानेंगे हमारे शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें और गांव का युवा हुनर की उड़ान, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे जल संरक्षण पर और बात होगी विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस पर। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सुप्रभात उज्जैन में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और आकाशवाणी उज्जैन पर। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं अपने शहर उज्जैन से। हमारा उज्जैन लगातार विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। सड़क, परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य शहर को नई पहचान दे रहे हैं। सीएस 2028 को ध्यान में रखते हुए भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। विकास का असली अर्थ तभी है जब इन परियोजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंचे और हमारा शहर सुविधाजनक, स्वच्छ और बेहतर जीवन जीने के लिए भी अनुकूल बने। इसी सकारात्मक विचार के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

दोस्तों, अब बारी है समाचार पत्र की, जिसमें हम जानेंगे अपने शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें। तो शुरुआत करते हैं सिंहस्थ के लिए हो रहे सड़क चौड़ीकरण के काम का। मंगलवार को कलेक्टर रोशन सिंह ने निरीक्षण किया। कंठाल सती गेट मार्ग का जायजा लेते हुए उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी को ध्यान में रखकर काम 25 अगस्त के पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान भी रखा है। अब बढ़ते हैं एक उपयोगी खबर की ओर। सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को शव को निवास या शमशान घाट तक ले जाने के लिए निशुल्क शव वाहन मिलेगा। जिले के 4 शव वाहन उपलब्ध हैं और 24 घंटे जिला चिकित्सालय के चरक भवन में रहेंगे। यह सुविधा शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के दौरान हुई मृत्यु के मामलों से मिलेगी। सेवा के लिए फोन नंबर भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा से जुड़ी एक खबर है। मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र दिव्यांग छात्र छात्राएं 31 अगस्त तक स्पर्श पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप भी मिलेगा। अब बात करते हैं परीक्षा से जुड़ी जानकारी की। देवास के गेट स्थित शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का केंद्र बनाया है। पहली बार उज्जैन जिले में MP लोक सेवा आयोग इंदौर का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसे उज्जैन और आसपास के अभ्यर्थियों दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षा 7 सितंबर से लगातार 6 दिन तक चलेगी। आइए अब रुख करते हैं आध्यात्मिक खबर पर। अग्रवाल जैसिस की ओर अंकपात मार्ग स्थित गार्डन में 5 लाख से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र जाप के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक किया गया। पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पुरुषोत्तम सागर में किया गया। अतिथियों के निर्माण में सहभागिता की और दीप यज्ञ भी कराया गया। इसी क्रम में अगली खबर है संस्कृति क्षेत्र से। कालिदास संस्कृत अकादमी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला शुरू हुई। इसमें 8 राज्यों ने 22 कलाकार 7 दिन तक विभिन्न कलाकृतियां तैयार करेंगे। इन्हें गोवा के नवनिर्मित संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यशाला 24 अगस्त तक चलेगी और रामायण पर आधारित चित्रकला भी तैयार की जाएगी। संस्कृति की इसी कड़ी में एक और खबर है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में मालवीय कवित्री संगीता तलेरा के काव्य संग्रह ओढ़नी पर परिचर्चा हुई। वक्ताओं ने संग्रह को मालवा के लगभग 1300 साल के इतिहास और मालवीय संस्कृति की पहचान से जोड़कर देखा। अध्यक्षता डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की। वक्ताओं ने कहा कि कविता प्रतिकूल समय में उम्मीद और सहारा देती है। अब बच्चों से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। श्रावण माह में हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था ने बच्चों को आध्यात्म और सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र जाप और सनातन पर मंथन कार्यक्रम किया। आयोजकों के अनुसार करीब 1.25 घंटे में 11 लाख मंत्र जाप हुआ। बच्चों ने मंत्र जाप के साथ सनातन पर अपने विचार भी रखे। इसी क्रम में सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक खबर पढ़ते हैं। भाजपा शहीद राजा भाऊ महाकाल मंडल के वार्ड 45 में रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ। आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया था। देवेंद्र यादव ने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए और सम्मान व स्नेह जताते हुए उपहार भेंट किए। ये थी हमारे शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें। अब वक्त हो चला है एक और प्यारे से गाने का।

गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सुप्रभात उज्जैन में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रीति। गांव का युवा, हुनर की उड़ान। अब बात करते हैं ग्रामीण भारत की उस ताकत की जो देश के भविष्य को नई दिशा दे सकती है, और वो है गांव का युवा। आज गांव में युवा शिक्षा, डिजिटल तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और नए व्यवसायों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत है अपने हुनर को पहचानने की और उपलब्ध अवसरों का सही इस्तेमाल करने की। आज का युवा सिर्फ रोजगार पाने वाला नहीं, बल्कि अपने हुनर से रोजगार पैदा करने वाला भी बन सकता है। गांव की प्रतिभा को अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो हुनर की यह उड़ान पूरे समाज को आगे लेकर जा सकती है। इसी प्रोग्रेसिव थॉट के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
1: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
0: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
1: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
0: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
1: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई, जरा देख के चल।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुप्रभात उज्जैन में आकाशवाणी उज्जैन पर। जल संरक्षण आज बचाएं कल सवारे, अब एक ऐसे विषय की बात जो हमारे आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा है। जल संरक्षण, पानी की हर बूंद कीमती है। बारिश के पानी को सहेजना, पानी की बर्बादी रोकना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और भूजल को रिचार्ज करने की कोशिश करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जल संरक्षण केवल किसी अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए, क्योंकि आज हम पानी बचाएंगे तभी कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इसी विचार के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फोटो क्लिक करना किसे पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब बात उस दिन की जो हमें यादों की तस्वीरों में सहजने की खूबसूरत कला याद दिलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस की, जो हर वर्ष 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, उसमें एक पल, एक भावना, एक पूरी कहानी छिपी होती है। आज मोबाइल फोन ने फोटोग्राफी को हर व्यक्ति की पहुंच में ला दिया है। हमारे उज्जैन की संस्कृति, महाकाल की नगरी, शिप्रा का किनारा, त्योहार और ग्रामीण जीवन, इन सब की खूबसूरती को तस्वीरों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी की तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ।

खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुप्रभात उज्जैन में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर। 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। यह दिन उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो संकट और मुश्किल परिस्थितियों में दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन मानवता सिर्फ बड़े कामों में नहीं, हमारे छोटे छोटे व्यवहार में भी दिखाई देती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बुजुर्ग का सहारा बनना, किसी परेशान व्यक्ति को सुन लेना या किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आना, ये सभी मानवता के ही रूप हैं। आइए हम अपने आसपास थोड़ी और संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को लेकर चले। इसी भाव के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो दोस्तों, आज के सुप्रभात उज्जैन में हमने बात की विकास, ग्रामीण युवा, जल संरक्षण, फोटोग्राफी और मानवता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति, जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। मैं हूँ आपकी अपनी आवाज, आपकी रेडियो साथी प्रीति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है।

0: दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रताप कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का

0: लम्बा है। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिडी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे प्रीति और आकाशवाणी उज्जैन के एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी महफिल में जहाँ होगी काम की बातें, पसंदीदा गाने और ढेर सारी गपशप, यानी कुछ बातें ऐसी जो आपकी सेहत और लाइफस्टाइल के लिए काम आएंगी और कुछ ऐसी जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी, और बीच बीच में हम सुनेंगे आपके और हमारे कुछ पसंदीदा गीत। तो चाय की चुस्की के साथ या सुबह की भागदौड़, या आप जहां हैं वहीं से जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का ये एक घंटा बिल्कुल अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर की गई बातचीत जैसा ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काम की बातें, पसंदीदा गाने और गपशप विद आरजे प्रीति। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

वेलकम बैक टू उज्जैनी आज ऑन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर। तो दोस्तों, बुधवार के मूड में करते हैं मिड वीक वाली गपशप। बुधवार यानी वेंसडे, ना मंडे की शुरुआत वाली घबराहट और ना फ्राइडे की आने वाली खुशी, बस बीच में खड़ा एक प्यारा सा वेंसडे। तो कभी कभी लगता है कि वेंसडे खुद भी सोचता होगा कि भाई मुझे कोई सीरियस क्यों नहीं लेता। लेकिन सच यह है, हर दिन का अपना मूड होता है। अगर आज आपका मूड वेंसडे को थोड़ा बिजी, थोड़ा बोरिंग या फिर बिल्कुल शानदार बनाने का है, तो याद रखिए मूड को थोड़ा सा म्यूजिक और थोड़ी सी मुस्कान से बदला जा सकता है। और वैसे भी हफ्ते का कोई भी दिन हो, अगर सुबह अच्छी बातों से शुरू हो जाए तो पूरा दिन बहुत बेहतर लगने लगता है। तो आइए वेंसडे मूड को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक टू उज्जैनी आरजे ऑन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आरजे प्रीति के साथ। रेडियो सिर्फ गीत नहीं, आपका साथी भी है। तो दोस्तों, एक बात बताइए, आप रेडियो कब सुनते हैं? चाय बनाते समय, ऑफिस जाते समय, घर का काम करते हुए या फिर गाड़ी चलाते समय? क्योंकि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे सुनने के लिए आपको अपना काम रोकना नहीं पड़ता। रेडियो आपको गाने सुनाता है, लेकिन साथ ही खबरें, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, मौसम, समाज और आसपास की दुनिया की तमाम जानकारियों से भी जोड़ता है। कई बार कोई छोटी सी जानकारी ऐसी मिल जाती है जो हमारे पूरे दिन के काम आ जाती है। तो रेडियो को सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक मत बनाइए, इसे अपनी डेली लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बनाइए। और अब इसी साथी के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

उजैनियार जय में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन, RJ प्रीति के साथ। अब बात करते हैं फिटनेस की, और यहाँ एक कंफ्यूजन, फिटनेस का नाम सुनते ही क्या आपको भी जिम, ट्रेडमिल और भारी भरकम एक्सरसाइज याद आती है? लेकिन फिटनेस का मतलब हमेशा जिम जाना नहीं होता है। जिम जरूरी है या बस थोड़ा सा एक्टिव रहना, ये कंफ्यूजन तो हमेशा रहता है। रोज थोड़ा पैदल चलना, स्ट्रेचिंग करना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, योग करना और अपने शरीर को एक्टिव रखना भी अच्छी शुरुआत हो सकती है। सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी रूटीन में मूवमेंट के लिए जगह बनाएं। आखिर शरीर भी हमसे कभी कभी कहता होगा कि भाई मुझे भी थोड़ा सा चला लिया करो। तो आज का छोटा सा फिटनेस चैलेंज यही है कि आप जहां हैं, जहां संभव हो सके, थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट और थोड़ा कम आलस करें। तो इसी एक्टिव मूड के साथ आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है

0: है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
0: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं आरजे प्रीति के साथ। तो सुबह की चाय, नाश्ता और खान पान की बातें भी कर ही लेते हैं। अब आते हैं उस विषय पर जिसके बिना शायद हमारी सुबह अधूरी है, यानी कि चाय। किसी की चाय अदरक वाली, किसी की इलायची वाली और किसी की चाय में चीनी इतनी कि चम्मच भी ढर जाए। लेकिन चाय के साथ एक ज़रूरी बात, दिन की शुरुआत चाय से नहीं, अच्छे ब्रेकफास्ट से भी होनी चाहिए। सुबह का खाना बहुत भारी होना अच्छे ब्रेकफास्ट की निशानी नहीं है। सुबह का खाना भारी नहीं, लाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी हो तो आपको दिन भर एनर्जी देने में मदद करेगा। फल, पोहा, उपमा, दही, अंडा या घर में उपलब्ध बैलेंस ऑप्शन, अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से कुछ पौष्टिक जरूरी खाना ज़रूरी लीजिए, क्योंकि पेट को भी पता होना चाहिए कि आज का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है। और अब ब्रेकफास्ट की बातों के साथ म्यूज़िक का भी ब्रेकफास्ट हो जाए इस गाने के साथ।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जिंदगी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द की और वो है पानी। जी हाँ, छोटी सी आदत बड़ा फायदा। एक सवाल आप अपने आप से कीजिए कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं या फिर याद रखते हैं कि पानी पीना है, या फिर शरीर को जब याद दिलाना होता है कि जब आप पानी पीते हैं। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं। इसीलिए एक सिंपल हैबिट बनाई जा सकती है, अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और दिन भर नियमित रूप से पानी लेते रहें, खासकर गर्मी में। फिजिकल एक्टिविटी या बाहर जाने के दौरान डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने फ़ोन की बैटरी को 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन शरीर की बैटरी के बारे में अक्सर सोचते ही नहीं हैं। जब वह थकान का सिग्नल देता है तब सोचते हैं। तो शरीर को थोड़ा सा रिचार्ज करने की बात हो गई है तो मन को भी म्यूजिक से रिचार्ज कर लेते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना फिल्म सत्यमेव जयते से।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: वेलकम बैक टू FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन एंड यू आर लिसनिंग टू उज्जैनी आरजे विद आरजे प्रीति। श्रोताओं, महिलाओं के लिए खुद का ध्यान रखना, खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अब एक खास बात महिलाओं के लिए और उन सभी के लिए भी जो अपने घर की महिलाओं की केयर करते हैं। महिलाएं अक्सर घर परिवार काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना भूल जाती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन रेस्ट और मेंटल वेल बीइंग का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अपने लिए कुछ समय निकालना सेल्फिश होना नहीं, बल्कि हम जब खुद हेल्दी और खुश रहते हैं तभी हम दूसरों को भी बेहतर ख्याल रख पाते हैं, दूसरों की भी केयर कर पाते हैं। तो हर महिला के लिए आज एक छोटी सी याद, आपकी ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और इस खूबसूरत थॉट के साथ सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

वेलकम बैक टू FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन एंड यू आर लिसनिंग टू उज्जैनी आरजे विद आरजे प्रीति। युवाओं की जिंदगी, करियर भी, हेल्थ भी, अब इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा युवाओं से बात करते हैं, पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी, करियर, फ्यूचर, इन सब के बीच कई बार समय पर खाना खाना नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती और एक्सरसाइज के लिए तो कल से शुरू करेंगे वाला वादा ही चलता रहता है। लेकिन करियर बनाना जरूरी है और हेल्थ को भी साथ लेकर चलना उतना ही जरूरी। आखिर अच्छी नौकरी के साथ अच्छी एनर्जी भी होना चाहिए, अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए। इसीलिए रूटीन में थोड़ा बैलेंस रखिए, काम और पढ़ाई के साथ प्रॉपर रेस्ट, अच्छा खाना और फिजिकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि करियर की रेस लंबी है और उसमें शरीर आपका सबसे इंपॉर्टेंट साथी है। तो युवाओं के नाम आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे। चलिए अब थोड़ा सीरियस टॉपिक्स को साइड में रखते हैं और करते हैं जमकर गपशप। याद है वो समय जब घर में एक ही लैंडलाइन फोन होता था और उसके बजने पर पूरा परिवार सोचता था कि किसका फोन होगा, और आज हर किसी के हाथ में अपना अपना फोन है। पहले शॉपिंग के लिए बाजार की सैर होती थी, अब घर बैठे सामान आ जाता है। और पहले फोटो के लिए एक अच्छा मौका ढूंढते थे, अब कैमरा रोल में हजारों तस्वीरें हैं। जिंदगी सच में बहुत बदल गई है, लेकिन इन बदलावों के बीच कुछ चीजें शायद नहीं बदलनी चाहिए, और वो है परिवार के साथ बैठना, दोस्तों से मिलना और आमने सामने दिल खोल कर बातें करना। टेक्नोलॉजी बदले, जमाना बदले, रिश्तों की गर्माहट बनी रहनी चाहिए। तो पुरानी यादों और नई दुनिया के इस मिक्स के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

FM 102.5 MHz पर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। छोटी छोटी अच्छी आदतें या बड़ा असर। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन असल में कई बार छोटे बदलाव भी बड़ा असर करते हैं। रोज़ थोड़ा चलना, समय पर सोना, पानी पीना, खाना आराम से खाना, घर में पौधे लगाना, किसी से प्यार से बात करना या रोज़ कुछ नया सीखना, ये छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और इसके साथ ही एक और अच्छी आदत, किसी को थैंक यू बोलना या जेन्युइनली कहना कि आप कैसे हो। हो सकता है ये आपके लिए सिर्फ दो शब्द हो, लेकिन सामने वाले के दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम भी अपने दिन को बेहतर बनाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों आज के इस एक घंटे में हमने की काम की बातें, सुने पसंदीदा गाने और की ढेर सारी अपनी वाली गपशप। फिटनेस से लेकर खान पान, महिलाओं की सेहत से लेकर युवाओं की लाइफस्टाइल, रेडियो की खूबसूरती से लेकर छोटी छोटी अच्छी आदतों तक। उम्मीद है आज की हमारी बातचीत में आपको कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जिसे आप अपने दिन का हिस्सा बनाना चाहोगे। इसी उम्मीद और इसी मुस्कान के साथ अब मैं आपकी अपनी आवाज, आपकी आरजे प्रीति लेती हूँ आपसे विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर और जुड़े रहिए अपनी इस आवाज के साथ। दिस इज आरजे प्रीति साइनिंग ऑफ। मिलते रहिए नई सुबह, नए गीत और नई गपशप के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब

हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना दोस्तों? अगर आ रही है तो अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सफ़र बॉलीवुड बीट्स का। और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए सुरों सितारों और बॉलीवुड की हलचल से भरा बॉलीवुड बीट्स, जहां बात होगी उन गानों की जो कभी दिल की बात कह जाएं, कभी यादों में ले जाएं और कभी बस मूड ही बदल देते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सुरीले सफ़र की। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है और इमोशंस भी भरपूर है। फिल्म कबीर सिंह से कभी कभी कोई ऐसा गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। और बेख्याली उन्हीं गानों में से एक है जिसमें प्यार की बेचैनी, जुदाई का दर्द दोनों एक साथ सुनाई देता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म कबीर सिंह का ये बेहद खूबसूरत गाना सचेत टंडन और अरिजीत सिंह की दिल को छू लेने वाली आवाज़ में।

तो दोस्तों, कुछ रिश्तों की शुरुआत आज से नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे उनका कनेक्शन बहुत पुराना है। हमारा अगला गाना इसी खूबसूरत एहसास को समेटे हुए है, तो चलिए सुनते हैं फिल्म राब्ता का यह खूबसूरत गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की खूबसूरत आवाज़ में।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों अब मूड को करते हैं थोड़ा सा रोमांटिक, क्योंकि जब आंखें कुछ कहने लगे तो शब्दों की जरूरत ही कहाँ रहती है। नैनो ने बांधी एक ऐसा गाना है जिसमें प्यार की मासूमियत और उसकी खूबसूरत शुरुआत दोनों महसूस होती है। तो आइए फिल्म गोल्ड का ये प्यारा सा गाना यासर देसाई की आवाज़ में सुनते हैं।

तो दोस्तों, अगर गाने में बीट हो, स्वैग हो और जबरदस्त एनर्जी हो तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। हमारा अगला गाना बिल्कुल इसी मूड का है, एक ऐसा ट्रैक जो पार्टी हो या लॉन्ग ड्राइव माहौल ही बना देता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म वॉर का ये सुपरहिट गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: तो दोस्तों, हमारे अगले गाने में धुन में है प्यार, इसकी आवाज़ में है मिठास और इसकी वाइब है बिल्कुल दिल वाली। तो आइए सुनते हैं फिल्म जवान का ये खूबसूरत रोमांटिक नंबर अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में।

तो दोस्तों, इश्क की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है जहाँ लॉजिक कम और फीलिंग्स ज़्यादा चलती है। और जब इश्क में सूफियाना रंग घुल जाए तो कुछ एहसास खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं द डर्टी पिक्चर से दिल को छू लेने वाला ये गाना, कमाल खान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

दोस्तों, थोड़ा सा प्यार, खूब सारी मस्ती और पॉजिटिव बातों के साथ ये था हमारा बॉलीवुड बीस्ट। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन, मुस्कुराते रहिए, अपने रेडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन।

नमस्कार श्रोताओं, जय श्री महाकाल। आकाशवाणी उज्जैन के खास कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रीति। आज हम आपको किसी प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा पर नहीं बल्कि उज्जैन की एक ऐसी जगह की सैर कराने ले जा रहे हैं जिसके नीचे करीब 2200 साल पुराना इतिहास छिपा होने की बात सामने आई है। जी हाँ, आज की हमारी यात्रा है वैश्य टेकरी की ओर। तो आइए जानते हैं इस जगह की कहानी और जुड़ते हैं इसके इतिहास से, पर इस भजन के साथ।

श्रोताओं, वैश्य टेकरी उज्जैन का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ हुई खुदाई में प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले थे। माना जाता है कि यह स्तूप करीब 2200 साल पुराना हो सकता है और इसका संबंध मौर्य काल से जुड़ा है। यानी महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उज्जैन के इतिहास में बौद्ध परंपरा के भी महत्वपूर्ण निशान मौजूद हैं। अब इस कहानी की एक खास बात, हाल ही की रिपोर्टों में यह कहा गया है कि वैश्य टेकरी का प्राचीन स्तूप सांची के स्तूप से भी बड़ा हो सकता है। हालांकि इसका सही आकार आगे की खुदाई से ही साफ होगा। इस स्तूप को मौर्य काल और सम्राट अशोक के समय से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पक्के प्रमाण आगे की पुरातात्विक जांच से ही सामने आएंगे। आगे चर्चा यूं ही जारी रहेगी। अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस जगह पर 1938-39 के पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई थी। उस समय कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले, लेकिन खुदाई के दौरान गैस रिसाव की घटना के बाद काम रोक दिया गया। इसके बाद वैश्य टेकरी का इतिहास अपनी मिट्टी के अंदर ही छिपा रहा। अब इतने वर्षों बाद एक बार फिर इस जगह को लेकर नई उम्मीद जागी है और आगे वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज तैयार हो रही है। आगे चर्चा यूं ही जारी रहेगी। अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप जानते हैं कि वैश्य टेकरी हमें क्या बताती है। वैश्य टेकरी सिर्फ एक पुराना टीला नहीं है, यह हमें बताती है कि उज्जैन का इतिहास कितना पुराना और विविध रहा है। यहाँ अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के निशान मिलते हैं, इसलिए उज्जैन दर्शन सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। हमारे शहर की मिट्टी, पुराने स्थल और पुरातात्विक अवशेष भी उज्जैन की पहचान का हिस्सा है। आइए प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे पुराने इतिहास और वैश्य टेकरी की कहानी की। इससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, वैश्य टेक्ट की कहानी अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। आने वाली पुरातात्विक खोज से हमें इस प्राचीन स्तूप और उज्जैन के पुराने इतिहास के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। सोची आज जिस जगह हम एक साधारण सी टेकरी के रूप में देखते हैं, उसके नीचे कभी एक विशाल ऐतिहासिक स्मारक रहा होगा। यही तो उज्जैन की खासियत है कि यहाँ वर्तमान के साथ साथ हजारों साल पुराना अतीत भी हमारे साथ चलता है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आज के उज्जैन दर्शन में हमने वैश्य टेकरी की यात्रा की और जाना उसके करीब 2200 साल पुराने इतिहास के बारे में, जिसका ना

ता मौर्य काल से है। आगे के अंकों में, आगे के उज्जैन दशों के अंकों में हम उज्जैन के इतिहास को और भी करीब से जानेंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कभी कभी हमारी अपनी मिट्टी भी हमें इतिहास की कहानी सुनाती है। आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं अंतिम गीत के साथ।

तो दोस्तों, उज्जैन दर्शन की इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना उज्जैन दर्शन में उज्जैन के इतिहास को और भी करीब से। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति, आपसे लेती हूँ अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, और बाकी अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी उज्जैन के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा।

जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है। आंखों में नमी, होठों पे मुस्कान होती है। ना भूलना अपनी मुस्कुराहट को सखियों, इसी से आपकी हर मुश्किल आसान होती है। 102.5 FM और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन का महिला सभा कार्यक्रम, और मैं हूं आपकी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट प्रियंका। हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द एनर्जेटिक लेडीज। सखियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारा कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे भाव को जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। जी हाँ, मानवता। सखियों, आज है विश्व मानवतावादी दिवस, और यह दिवस हमें एहसास करवाता है कि मानवता, करुणा और मदद की भावना हम सभी की जिम्मेदारी है। सखियों, 19 अगस्त यानी कि आज ही के दिन 2003 में इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हुए बम हमले में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यकर्ता सर्जियो वियरा डी मेलो सहित 22 लोगों की मृत्यु हुई, और उन्हीं की स्मृति में 19 अगस्त 2009 से यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य संकट और आपदा में लोगों की मदद करने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अन्य संकटों से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ाना। सखियों, क्या आपने कभी भूख से बेहाल व्यक्ति को अपना सारा काम छोड़कर खाना खिलाया है? क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाया है, या किसी बच्चे को पढ़ाई में आर्थिक सहयोग किया है? डेफिनेटली किया होगा, मैं जानती हूँ ना मेरी सखियों को, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू। सखियों, मानवता किसी एक दिन की भावना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे अच्छे कार्यों का नाम है। एग्री करती है ना? और जब हमारे घर से मानवता की शुरुआत होती है, तभी संवेदनशील और मजबूत समाज का निर्माण होता है। अब समय हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो हियर द सॉन्ग फॉर यू फ्रॉम द मूवी चांदनी।

सखियों, भले ही आज सावन की झड़ी ना लगी हो, पर संगीत के जरिए हम इसे महसूस कर सकते हैं। सो ये गाना आप सभी सखियों के लिए।

0: सखियों, मानवता केवल किसी जरूरतमंद की मदद करने का नाम ही नहीं है, बल्कि हर बच्चे को स्वस्थ जीवन, पर्याप्त पोषण और शिक्षा का अवसर देना भी मानवता की सच्ची सेवा है। और ऐसा ही एक विषय है, पोषण भी पढ़ाई भी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री लोकेंद्र सिंह तंवर जी, जो कि जिला समन्वयक हैं मिशन नींव कार्यक्रम के। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, और इस परिचर्चा के अंदर शामिल होकर मुझे काफी खुशी हो रही है, और जितने भी हमारे श्रोता है मैं उन सभी को भी नमस्कार करना चाहता हूँ।
0: लोकेंद्र जी, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत पोषण भी पढ़ाई भी अभियान क्या है।
1: जी प्रियंका जी, मैं बहुत ही हर्ष के साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि 10 मई 2023 को भारत सरकार ने यह निर्णय लिया और इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, पोषण भी पढ़ाई भी, जिसकी मुख्य अवधारणा ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सिर्फ पोषण के साथ साथ पढ़ाई के साथ में भी किस प्रकार से जोड़ा जाए। ये जो अवधारणा है ये निकल कर आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, जहां पर ECC के ऊपर, जिसे कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, कि ये किस प्रकार से हमारे भविष्य के लिए भी जरूरी है, तो वहां से एक पूरी एक अवधारणा निकल के आती है जिसको नाम दिया गया पोषण भी पढ़ाई भी, जो आंगनवाड़ी पर संचालित किया जाता है।
0: जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। लोकेंद्र जी, कि किस एज ग्रुप के बच्चे आंगनवाड़ी में एनरोल होते हैं?
1: जी प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी के अंदर 0 से 6 साल के बच्चों को ये हमारे हितग्राही होते हैं, ये नामांकित होते हैं, और इस एज ग्रुप को शामिल करने के पीछे का साइंटिफिक मानना यह है कि 0 से 6 साल ये वह उम्र होती है जहां किसी भी बच्चे का 90% शारीरिक विकास और सभी प्रकार के विकास हो जाते हैं जो उसके पूरे जीवन के अंदर होते हैं। उसका 90% जो भाग रहता है इसी एज ग्रुप के अंदर रहता है।
0: ये जो वर्ष होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं विकास के लिए, ऐसा माना जाता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही समझा। इस समय सिर्फ जीवन के लिए नहीं, दिमाग का भी जिस प्रकार से विकास होता है उसमें से 85% विकास इसी समय बच्चे का हो जाता है, तो एक जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होते हैं।
0: जी, आंगनवाड़ी केंद्र की जो भूमिका है वो पूर्व में पोषण और स्वास्थ्य तक ही सीमित थी, और अब किस तरीके से आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को, कि क्या बदलाव आ रहा है?
1: जी, जैसा कि आपने बताया है कि पोषण और स्वास्थ्य तक पहले सारी चीजें सीमित थी, लेकिन अब सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के तहत आप आंगनवाड़ी को देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको LED टीवी मिलेगी, किस प्रकार से पोषण वाटिका का निर्माण हो रहा है, वहां पे RO वाटर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंगनवाड़ी भवन को बिल्कुल ऐसा बनाया जा रहा है कि सिर्फ वो एक तरीके से पोषण का केंद्र ना होते हुए एक शिक्षा का भी केंद्र के रूप के अंदर उसे संचालित किया जा रहा है।
0: जी, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन और हाईटेक भी उसे बनाया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते। लोकेंद्र जी, आंगनवाड़ी में जो बच्चों की जो उपस्थिति है उसमें उनकी रुचि बढ़ाने के लिए क्या गतिविधियां की जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर आएं और उनके अभिभावक भी आकर्षित हो सके?
1: जी प्रियंका जी, जैसा कि हम पूर्व के अंदर चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो हितग्राही है बच्चे, उनकी उम्र है 0 से 6 साल, और ये वह अवस्था होती है कि आपने भी अपने बचपन के अंदर देखा होगा कि जहाँ पे खेल सबसे ज्यादा प्रिय होता है और एक बच्चा हर चीज से खेलने की कोशिश करता है, भले से वो मिट्टी के खिलौने ही क्यों ना हो या फिर कागज के ना हो। तो आंगनवाड़ी के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति भी यही इस बात के ऊपर जोर देती है कि बच्चे को रटाने की बजाय खेल खेल के अंदर शिक्षा दी जाए, तो वही आंगनवाड़ी के अंदर इस प्रकार से चीजें लागू की जा रही है, जहां पे मेरे को बताते हुए काफी खुशी है कि बच्चे प्रसन्नता के साथ में दौड़ते हुए अपने अभिभावकों के साथ में आज आंगनवाड़ी पहुंच रहे हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों का झुकाव आंगनवाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा है। लोकेंद्र जी, शुरुआत में हमने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने कहा था जिला समन्वयक मिशन नींव कार्यक्रम, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मिशन

0: नींव कार्यक्रम क्या है?
1: हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि महिला बाल विकास भारत सरकार और रॉकेट लर्निंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान के अंदर मिशन नींव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। मिशन नींव, जिस प्रकार से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, नींव जिस प्रकार से किसी भी मकान की एक नींव बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से बच्चे के जीवन के अंदर जो उसके शुरुआती वर्ष जो रहते हैं वहां पे उनको किस प्रकार से और सशक्त बनाया जाए, ये एक नींव की भूमिका रहती है, तो यहीं से नाम रखा गया है मिशन नींव।
0: जी लोकेंद्र जी, जैसे कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो हर कक्षा का एक सिलेबस होता है, तो क्या ऐसा ही कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी होता है कि हर बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से कुछ सिलेबस तय है, क्या मापदंड रखे गए हैं?
1: जी प्रियंका जी, आपने ये काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि ये हमारे जो अभिभावक है उनके मन में भी ये जिज्ञासा रहती होगी कि किस प्रकार से वो समझे, तो मैं बड़े ही हर्ष के साथ में बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा आधारशिला पाठ्यक्रम नाम दिया गया है। आधारशिला जिस प्रकार से 3 से लगा के जो 6 साल की उम्र है, ये वो फाउंडेशन ईयर होता है जहाँ पे बच्चे की एक आधारशिला रखी जाती है, तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया। आधारशिला मेनली सरकार का एक पाठ्यक्रम है कि पूरे साल भर के अंदर जिसको अलग अलग सप्ताह के हिसाब से जोड़ा गया है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की गतिविधियां उसके अंदर शामिल हो। जैसे अगर सोमवार को अगर शारीरिक विकास से संबंधित अगर कोई गतिविधि कराई है, तो मंगलवार को उसका दिमाग का विकास कराने के लिए किस प्रकार से गतिविधि कराए, और अगर गुरुवार के दिन अगर रचनात्मक विकास कराया है, मिट्टी के खिलौने बनाना है, तो फिर अगले दिन सामाजिक विकास से किस प्रकार से, मुख्यतः बच्चों के विकास के अंदर विकास के 5 आयाम जिसके अंदर शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, रचनात्मक विकास और भाषात्मक विकास शामिल रहता है। तो ये आधारशिला पाठ्यक्रम है जो पूरे देश के अंदर और अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से अलग अलग दिन गतिविधि हो जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो उसी तरह इसको संचालित किया जाता है।
0: जी लोकेंद्र जी, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर दिन नई गतिविधि बच्चों को करवाई जाती है, कुछ नयापन हर दिन रहे ताकि बच्चों में जो एक इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहे?
1: जी, एक काफी अच्छा प्रश्न है आपका कि जब अलग अलग गतिविधि कराते हैं तो इससे बच्चे का उत्साह भी बढ़ता है और बच्चे के मन के अंदर ये उत्साह रहता है कि आज आंगनवाड़ी पे जाने के बाद है क्या। जी आपका, क्योंकि आपने भी बचपन के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग खेल की इच्छा होती है, तो उसी प्रकार से ये किया जा रहा है जिससे बच्चों के अंदर भी काफी उत्साह रहता है।
0: जी जी, संसाधनों की कमी क्या ये शाला पूर्व शिक्षा को प्रभावित करती है, या कोई अच्छी शाला पूर्व शिक्षा कैसे दी जा सकती है?
1: जी जिस प्रकार से हमने पूर्व के अंदर भी बात कही है कि जो हमारे आंगनवाड़ी का जो ग्रुप है वो 0 से लेकर 6 साल का ग्रुप है, अगर हम ये देखें कि अगर आप अगर अपने दोनों हाथों को अगर बच्चे के सामने लेके जाएंगे और एक में अगर आप 5 लाख रुपए रखेंगे और एक में अगर चॉकलेट रखेंगे, तो मेरे ख्याल से लगता है बच्चा चॉकलेट की तरफ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अवधारणा है कि एक बच्चे को खेल चाहिए, वो अपने माँ के जो पल्लू है उससे भी छुपनछाई खेल सकता है, या फिर अगर माँ रसोई के अंदर खाना बना रही है तो जो खुरपा है उसके साथ में भी बच्चा खेलने की कोशिश करेगा। तो जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा है कि अगर संसाधन अगर नहीं भी हो गए तब भी हम देखते हैं कि मिट्टी के खिलौने बना के या फिर कागज के नाव बना के या फिर जो हमारे जो दैनिक उपयोगी जो चीजें हैं उनका भी हम उपयोग करके उनको शाला पूर्व शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है।
0: जी, ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों पर। लोकेंद्र जी, क्या जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है उसका उपयोग आप करते हैं ये शाला पूर्व शिक्षा के लिए, या हम कहें कि पोषण भी पढ़ाई में अभियान में?
1: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैसे कि मैंने आपको पूर्व के अंदर भी बताया कि मिशन नींव कार्यक्रम इसी बात के ऊपर जोड़ देता है कि जो आधारशिला पाठ्यक्रम है, दैनिक किताबों के अंदर जो गतिविधि लिखी है उसका समय बचाने के लिए जो तकनीकी का उपयोग है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक गतिविधि का 2 वीडियो भेजा जाता है और वही वीडियो पोषण ट्रैकर के अंदर भी आते हैं, जहां ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई है कार्यकर्ता को कि उनको सिर्फ वीडियो को देखना है और अगले दिन अपने केंद्र के ऊपर संचालित कराना है। साथ ही साथ इस वीडियो को बच्चों के पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं, माता पिता को भी भेज सकते हैं, ताकि उनके साथ में बच्चे जो है वो अपने घर जाके भी उन गतिविधियों को दोहरा सके और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए।
0: जी बहुत ही अच्छा, ये आपने हमारे श्रोताओं को बताया है। अब तक हमारी जो हमने बातचीत की है उससे हमारी समझ काफी विकसित हो गई है कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान क्या है, शाला पूर्व शिक्षा क्या है, और जो आधारशिला जो आपने बताया है, ये सारी मुझे लगता है कि जो श्रोतागण है वे सब चीजें जान गए हैं। तो अब आप हमारे, चूंकि आप उज्जैन जिले में काम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जो आप काम किया जा रहा है इसमें क्या नवाचार हुआ है।
1: जी प्रियंका जी, जिस प्रकार से आपने नवाचार की बात करी

0: तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला बाल विकास के उज्जैन संभाग के संयुक्त संचालक श्री राजेश मेहरा सर और जिला कार्यक्रम अधिकारी उज्जैन जिला ब्रजेश त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन के अंदर हम जिले के अंदर हम कई नवाचार कर रहे
1: जी
0: हैं, जिसके अंदर हम प्रमुखता से देखेंगे कि हमने टीएलएम का निर्माण आंगनवाड़ियों के अंदर कराया है। टीएलएम जिसको कहा जाता है टीचर लर्निंग मटेरियल, शिक्षक अधिगम सामग्री, कि आंगनवाड़ी के अंदर किस प्रकार से बच्चा सिर्फ किताबों से ना सीखते हुए जिस प्रकार से वो अपनी दीवारों को देखे या फिर किसी भी चीजों को देखे तो उनसे भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। तो इसके अंदर हमने कोशिश की गई है कि किस प्रकार से अनुपयोगी चीजों को कार्यकर्ता जो है वो बच्चों के शिक्षक के रूप के अंदर एक सामग्री के रूप में ले। इसके लिए हमने मुझे बताते हुए काफी प्रसन्नता है कि उज्जैन जिले के अंदर करीब 100 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर कार्यकर्ता ने स्वयं प्रेरित होकर फर्श के ऊपर टीएलएम बनाए। फर्श के ऊपर उन्होंने एबीसीडी लिखना या फिर जो लंगड़ी का खेल बनाना या फिर खोखो जैसे विभिन्न प्रकार की उन्होंने फर्श के ऊपर पेंटिंग करके बनाया है, ताकि अगर कोई सामग्री अगर नहीं भी हो तब भी बच्चा वहां पे खेल सके। और वहां पे जो गतिविधि जो कराई जा रही है वो विकास के 5 आयाम, जिसको हम पूर्व के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं, वहां पे उनके साथ में उस गतिविधि को कराया जाता है। मैं प्रियंका जी आपको आगे बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर पीटीएम आयोजित होती है, उसी प्रकार से आंगनबाड़ी के अंदर भी माह के चौथे मंगलवार के दिन एक बाल चौपाल कार्यक्रम आयोजित होता है, जहां पे बच्चों का जन्मदिन हम संचालित कर रहे हैं, जहां पे बच्चों को काफी खुशी रहती है और बच्चे पूरे महीने भर इंतजार भी करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज जन्मदिन मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ तो बाल चौपालों के अंदर अभिभावकों को भी शामिल किया जा रहा है, और बाल चौपालों के अंदर इस चीज के ऊपर भी चर्चा की जाती है कि महीने भर के अंदर बच्चे ने क्या सीखा है, जिससे अभिभावकों को भी काफी खुशी होती है। कि और जिस प्रकार से हम कहेगी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कार्ड उनको मिलता है, ये हमने नवाचार करा है परियोजना नागदा के अंदर, जहां पे हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करे, जहां पे हमने इसकी बच्चा कौन से विकास के अंदर अव्वल है और कहां पे जोर देने की आवश्यकता है वो हमने अवलोकन करा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बाल मेला भी आयोजित किया गया, ये बहुत ही बड़ा स्तर का और मैं समझता हूं कि संभवतः मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार ये उज्जैन जिले के अंदर ये नवाचार है, जहां पे आंगनवाड़ी बाल मेले को इतने भव्य रूप से संचालित किया गया और अवलोकन के माध्यम से, और साथ ही साथ जिस प्रकार से एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं प्रियंका जी, उसी प्रकार से हमारी आंगनवाड़ी के को भी संचालित करने के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ में सहायिका की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी प्रकार से हमने नवाचार के रूप में सहायिका को प्रशिक्षण करा और उनको मुख्य धारा से जोड़ा कि किस प्रकार से वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कंधे से कंधा मिला के और केंद्र के ऊपर अच्छी शिक्षा दे सकती है। तो इसी प्रकार के हमने काफी नवाचार उज्जैन जिले के अंदर संचालित हो रहे हैं।
1: ये बहुत ही हर्ष की बात है कि जो अभी आपने मेले की बात की है तो वो उज्जैन जिले में बहुत ही व्यापक रूप से इसका आयोजन किया गया है। अब आप हमारे श्रोताओं को अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता के रूप में कई अभिभावक भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे एक ही चीज को कहना चाहता हूँ कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था ऐसी है जहाँ पे बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव है। बच्चा अगर आंगनवाड़ी के अंदर अगर 2 से 4 घंटे रुका है, लेकिन उससे भी अधिकांश समय वो अपने माता पिता के साथ में, अपने सोसाइटी के साथ में है, तो ये हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को एक बहुत ही सुरक्षित माहौल प्रदान करें और खेल खेल के अंदर, संवाद के रूप के अंदर उसको सिखाने की कोशिश करें। क्योंकि प्रियंका जी, हमारा मानना है कि जो आज जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, ये कल देश का भविष्य साबित होंगे, तो कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को हम सुरक्षित रखें और उनके अंदर एक बीज बोने के अंदर ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, जो कि उसी बीज का एक पौधा कल हम सभी के बीच में समाज में निकल के आएगा।
1: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो महिला बाल विकास विभाग द्वारा की जा रही है उसके विषय में आपने सभी श्रोताओं को अवगत करवाया। सखियों, अभी हमने बातचीत की श्री लोकेंद्र तंवर जी से पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर, और हमने जाना कि शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए बालकों के पोषण के साथ साथ शिक्षा पर भी काम किया जा रहा है। हमारी चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: 102.5 FM पर आप सुन रहे हैं महिला सभा कार्यक्रम। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की छोटी सी जगह परिवार के पोषण का साधन बन सकती है? वो कैसे, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं सुषमा के घर।
1: सुषमा, अरे ओ बिटिया, जल्दी तैयार हो जाओ, सब्जी खरीदने जाना है।
0: जी आई दादी।
1: क्या दादी, रोज रोज बाजार जाना पड़ता है सब्जी लाने के लिए। आजकल सब्जियां फल सब केमिकल से पकाए जाते हैं और पैसे भी कितने खर्च होते हैं। क्यों ना हम घर में सब्जियां उगाएं?
2: सब्जियां वो कैसे कर सकते हैं बिटिया, हमारे पास तो खेत भी नहीं है।
0: अरे दादी, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए खेत होना जरूरी नहीं है, हम बालकनी या फिर टेरेस पर साग वाटिका बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है दादी, थोड़ी सी जगह, मिट्टी, खाद और अच्छे बीज चाहिए।
2: अच्छा बिटिया, और क्या कर सकते हैं हम?
0: दादी सबसे पहले हम घर में ऐसी जगह चुनें जहां पर धूप हवा सफिशिएंट आता हो, और जमीन ना हो तो गमले में या फिर कोई कंटेनर हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम भिंडी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला और खीरा भी गमले में या फिर ग्रो बैग में विकसित कर सकते हैं, जहां पर पर्याप्त धूप आती है। और जहां पर धूप आती है वहां हम सेम और लोबिया भी लगा सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। और तो दादी, अगर आप खाद के बारे में सोच रहे हो तो हम जैविक कचरे से पोस्ट कंपोस्ट तैयार कर, इससे मिट्टी भी अच्छी रहती है और घर के कचरे का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि परिवार के भोजन में हमको ताजी और विविध सब्जियां मिलेंगी, और दादी इसका खर्च भी कम आएगा। बस हमको दो बातों का ध्यान रखना है कि बीज बोते समय बीज को 1 से 3 सेंटीमीटर अंदर दबाएं, वरना अंकुरण जो है वो प्रभावित हो सकता है। और दादी जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि पानी और नमी का संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। लगातार गीली मिट्टी जड़ों में सड़न फफूंद की समस्या बढ़ा सकती है।
2: अरे बिटिया, ये वाटिका का विचार तो बहुत ही बढ़िया है।
0: हाँ दादी, ये बहुत ही अच्छा विचार है। तो सखियों, इस तरह से आप अपनी साग वाटिका तैयार कर सकते हो। घर का छोटा सा किचन गार्डन परिवार के बेहतर पोषण की बड़ी शुरुआत है। ताजी सब्जियों से स्वस्थ परिवार होगा और प्रकृति के करीब जीवन भी होगा।

सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें पत्र के जरिए बता सकते हैं। हमारा पता है केंद्र निदेशक कार्यक्रम महिला सभा, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा 456010 हमारा पिन कोड है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं और साग वाटिका में आपने किन किन सब्जियों को बोया है वो भी आप हमें पत्र के जरिए बता सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो फ्रेंड प्रियंका को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में अगले कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारती मुंबई से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनूप जलोटा के स्वर से।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

उषा मंगेशकर, भूपेन हजारिका और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजें सुनिए। एल्बम का नाम है ये प्यार का मौसम है।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे भाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।
1: ये था गुलजार का स्वर।

तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत। कुणाल वर्मा के बोल थे। पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज। कैफ भोपाली के बोल हैं। प्रोग्राम है रंग तरंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी,
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है।

0: कि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाऊ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

चंबल की कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्शलालपुरी के बोल खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है।

0: एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहियुद्दीन के बोल थे खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का

दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने बरसों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता। लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर। ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही है। साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे, चांदनी, फासले, रात, रंजुगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम, आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो दिल तोड़कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ें, और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी, और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। फारूक शेख और पूनम ढिल्लन इस फिल्म में होते हैं हीरो हीरोइन और बहुत जल्द जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिलकश चमकते सितारे भला किसे नहीं सुहाते हैं, बचपन से ही ये दिलों को लुभाते हैं, टूटते हुए तारे मन में एक सवाल सा जगाते हैं कि टूट के आखिर कहाँ तलक जाते हैं। ये भी बताइएगा कि बचपन में जब तारों भरी रात में जागकर देखते थे आंगन में खाट डालकर, तो कौन कौन से तारे आप गिनते थे, उन तारों के नाम अगर याद है तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर दिल तोड़ने का किसी की भलाई के लिए है तो वो बड़ा है, वरना तो अंत तक निभाने वाला सही है। देखो ना ममता जी, आटे वाले हाथ धोकर लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। ये तो आपका जुनून है और आपका प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है विविध भारती के प्रति जो ऐसा करवा रहा है। और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ हीरोइन आटा गूंथ रही है और दरवाज़ा बेल बजती है, घंटी बजती है, तो बाल पीछे करती है और आटा बाल में लग जाता है, लट में। वो कौन सी फिल्म है अगर याद है तो ज़रा नाम लिखिएगा। बहरहाल हम आपकी टिप्पणी एक दो और पहुंचा दें आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खयाम साहब के खूबसूरत गीतों से सजा है आज का सुरीला सफ़र, बहुत आनंद आने वाला है, आज सुबह से उनके गीत बज रहे हैं। असल में खयाम साहब के गीत तो सुन रहे हैं, सुरीला सफ़र को हमने अब एक अलग रंग दिया है, इसलिए खयाम साहब के साथ साथ उन्हें तो हमने याद किया ही, साथ में और भी तमाम गाने शामिल किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया। कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है, और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। इस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं, फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको, जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाएंगे चोरी चोरी फिल्म का जिसमें चांदनी रात है, इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है और देखा है कई बार, नीला अंबर शब्द है, और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिलेनादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं। और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका जवाब आया है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाज़ा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। क्या बात है भाई, बहुत

सारी फिल्में आपने देख रखी है और जानकारियां बहुत समृद्ध है, हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते। और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है, बॉबी फिल्म बॉबी में डिंपल होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए। और फिर एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा, थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया, सही सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था। अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है आंगन है लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं, तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप ज़रा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

0: बाजार फिल्म की ये गजल थी भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने, बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमरा और जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपेंद्र की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ही गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए, जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपके आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं, जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रही हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बया करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ, अपने छत पर, घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहां पर हम बजाते हैं अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी, तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई खास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं, कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए, और ये गाना सुनते सुनते जरूर

सावन को आने दो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। अरुण गोविल और जरीना वहाब, हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूँ, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार

तुझे देखा है, मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे। खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो, कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको पूछना है। तो एक ये पहेली होगी, दूसरी पहेली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये लिख रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में।

हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है, क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर वर्षों बाद धड़कती है, तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा, ये जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से

0: होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी, अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं। हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं। तो चलिए अंत, फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से, उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है, बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं, बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

0: शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत टाइगर जिंदा है। इस फिल्म से गीत आप सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज में।

ए.आर. रहमान, अनुराधा, अनुपमा की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल से, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार ए.आर. रहमान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर जिले में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। हर बहन के खाते में 1,750 रुपए पहुंचेंगे, जिसमें 1,500 रुपए नियमित किस्त और 250 रुपए रक्षाबंधन का विशेष शगुन है।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार 28 तारीख को होने वाला है। आज मैं मैहर की माताजी के स्थान से 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनाओं के लिए उनकी नियमित 1,500 की किस्त और 250 रुपए अलग से रक्षाबंधन का नेग उनको देने के लिए हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है। ये बहनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प का भी कारण है। कई घरों में ये बहुत बड़ी राशि है, 1,500 रुपए महीना हर महीने जो मिल रहा है, इससे घर के पूरे आर्थिक तंत्र को बदल रहा है।
0: मुख्यमंत्री इस अवसर पर मां शारदा लोक के फेज वन का भूमि पूजन भी करेंगे और मैहर में करीब 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मानसिंह यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे।
2: भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मध्य प्रदेश की 4 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों का मुख्यमंत्री खेल ट्रॉफी कराई जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और शाम को 5 बजे समापन अवसर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
0: भिंड के गोहद क्षेत्र के धमसा गांव में बिना लाइसेंस चल रहे सेवई और नूडल्स कारखाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने निरीक्षण के दौरान गंदगी और मक्खियां पाई। कारखाने में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का निर्माण और पैकिंग

की जा रही थी। टीम ने मौके से 200 कट्टे मैदा और करीब 50 कॉटन सेवई जब्त कर कारखाने को सील कर दिया है। अब रुक करते हैं खेल का। श्रीलंका में खेले गए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे। जवाब में

0: शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को नर्मदापुरम में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर से रीवा, अंबिकापुर और सिंगरौली जाने वाली इंटरसिटी ट्रेनों का मुख्य स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए नया टर्मिनल अब मदन महल बना दिया गया है और शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरपंचों और सचिवों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में

0: स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित छह प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का

0: सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गांव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N. गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा

समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खय्याम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पर आइए। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का, उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने कह दिया।
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि अरे उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे। और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस

0: विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी,
0: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
0: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है, आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चले जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में ही बात होगी।
0: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
1: भाई, महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना, वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है, लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
0: बिल्कुल,
1: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
0: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं,
0: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में जो पीछे परिवार में बच्चे रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है? कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज भेजिए।
1: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास, उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजोकर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी वो हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियोटिप ये आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
1: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को ये जो आविष्कार है इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मेल का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हम सबके ही जीवन में,
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं। और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है और सदियों में ये विकसित हुआ, जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को, उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी, सही कहा दीपा।
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, या आपका कोई आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो, तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन

0: लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था।
1: हाँ।
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर हाँ। कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको हाँ। लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते ना कि इंतजार करना पड़ता था ना,
0: हाँ जी।
1: जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादियों में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं तो वो फोटो, पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल, दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी ऐसे छोटे से गाँव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो, तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी है। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए।
1: हाँ,
0: और कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता था। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते थे।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे, उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लीजिए।
1: चलिए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं। 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल।

0: ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
1: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें भी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
0: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
1: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें है ना, यही असली मानवता होती है।
0: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
1: क्या बात है। तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्यौहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा। नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी, लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचें, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
1: होंगे।
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिया में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं,
1: जो बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ।
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़कर या बांधकर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे, वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो पारंपरिक
1: कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे आपने
1: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की धारियां होंगी, अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
1: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका

0: तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर यह बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो जॉर्जेट कॉटन
0: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
1: जी। और अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
0: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल, और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिजाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
1: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
0: और लहरिया का एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
1: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ झटपट बनने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज़ बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में।
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए हमारे श्रोता ने हमें लेकर भेजी है। 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है इसमें आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीज़ें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब 1/2 चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, 1/2 कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहें तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा मतलब आटे जैसा तैयार
1: कर मतलब लीजिए, एक साथ में इकट्ठा हो जाए,
0: हाँ टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां टिकिया बनाकर खाएंगे क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत,
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है, व्हेन आई वाज इन कश्मीर
1: जी।
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
2: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
2: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आप

0: को फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गज़ल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
1: वो तो
0: तो
1: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
0: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
1: दोनों जहान तेरी

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरी।
0: क्या खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने
0: हाँ
1: कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है। हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है, लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
0: कश्मीर का
1: का
0: है।
1: रहने
0: जी
1: वाला है,
0: जी
1: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
0: जी
1: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
0: जी
1: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
0: जी
1: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
0: जी
1: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूं।
0: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है, और उनसे सीखकर हम भी
1: हमारे
0: बने हैं।
1: शिक्षक रहे
0: और
1: हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद
1: करते हैं,
0: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
1: बिल्कुल।
0: रहा है।
1: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूं, मैं
0: जी
1: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
0: एट जी जी
1: सुनूं,
0: जी
1: या एक और है 107. जैसे जैसे आकाश
0: आप
1: गोल्ड
0: जहां
1: है।
0: जहां शहर
1: हाँ
0: बदलेंगे हमारे नंबर्स
1: जी
0: बदल
1: जी
0: जाते हैं
1: नंबर्स
0: कि
1: बदल
0: आपको
1: जाते
0: अलग
1: हैं,
0: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
1: लेकिन
0: देता
1: मुझे
0: है।
1: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी
1: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
0: जी
1: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
0: जी
1: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
0: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
1: हम
0: अच्छा
1: हमेशा
0: चलता
1: साथ
0: जाता है।
1: हैं, हम
0: जी
1: हमेशा साथ,
0: तो अब हम वापस आपके
1: मेरे
0: जीवन
1: बचपन
0: पे
1: में
0: आ
1: चल
0: जाते
1: रहे थे। फिर
0: हैं।
1: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
0: जी
1: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
0: जी
1: अब भी है वो।

0: जहाँ पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे, तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोड़ते थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
1: सेट
0: के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए जी
0: लगाने
1: है।
0: के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी। और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा।
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह की वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया। छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
1: जी।
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब
1: जी,
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
1: जी।
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेस करते थे। तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम कोई ना कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
1: जी,
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते
1: जी।
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते थे, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
1: निकल पड़े थे, मतलब
0: ऐसा था
1: भाग
0: कि मैं,
1: पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
1: जी।
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था, और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना, तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली
1: 18,
0: आ गया था
1: 20 years.

0: एज हो गया, 19-20 साल
1: की उम्र थी। तो वहां मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहां पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
0: मतलब
1: पास
0: रेडियो
1: हुआ।
0: का साथ छोड़

0: ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है
1: जी।
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला
1: जी।
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताए तो
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था। और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूं
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा, ऐसा नहीं है। मुझे कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: मतलब बेस अच्छा होता है,
0: तो उसमें आप नीचे की तरफ सा
1: के बाद
0: नीचे आए नीचे की तरफ जितना जाएंगे
1: जी।
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि व्हेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: है
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है
1: जी,
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको।
1: किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए?
0: कोई भी, जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा,
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है
1: जी,
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए
1: जी,
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं
1: जी।
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है कि चूंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है और उसको कैसे साथ में लेके चलना है, तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है
1: जी,
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है, तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद के गुरु भी बन सकते
0: खुद क्या।

0: और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन से वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी, तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप वहां पहुंच सकते हैं। और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं।
1: जी,
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी,
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते। एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं। और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है। जी,
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी,
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना, करते करते उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजे भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
0: जी। जी,
1: अब वो है नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और मेरी आंटी घर पर रहती थी, बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
0: भूल गई।
1: लेकिन हाँ, वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय।
0: अच्छा।
1: आई थिंक दैट वॉज कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ।
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के
0: जी,
1: बहुत बड़े
0: जी, जी,
1: एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे। तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश

0: रहा हूं, शायद रिफाइन कर रहा हूं, तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसको हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी। तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की, तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी,
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें, और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनिश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया
1: जी।
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी,
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, वो
1: इतने सारे सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी।
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाएंगे
1: जी। ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना।

0: चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं, मुझे भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध भारती के श्रोताओं को खासकर उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था। जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया था। तो देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात करते थे।
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना।
1: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: था। जी बिल्कुल।
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर, देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटरक्रूज में भी था, जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था, और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं पुलिस वाले का रोल करके मतलब इट इज मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माय प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा

0: मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया
0: हाँ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, आपका कोई होना चाहिए,
1: जी।
0: देर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगाया एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी,
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही
1: करते
0: हमारा
1: थे
0: भी कुछ वैसा ही था।
1: जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में, कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश
1: जी
0: चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात कराई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूजिक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती है
1: थोड़ा सा
0: आपको
1: आप गा
0: ताऊ
1: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं
0: जो
1: तक पहुंचा देंगे।

0: देखिए यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट जोन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है।
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी,
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें
1: आपको
0: हैं
1: आने वाली
0: अवेलेबल।
1: फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी, अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं। इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
1: जी।
0: ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज भाग
1: अगर वो हारते हैं, टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
1: जी
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारः अस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
1: जी
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
1: जी
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
1: जी
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
1: जी
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
1: जी
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
1: जी
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं।
1: जी
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
1: जी
0: सक्सेस मतलब गाने का मौका
1: बिल्कुल
0: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
1: जी
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा,
1: जी
0: इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं,
1: जी
0: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में, तो और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, तो
1: जी
0: होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन।
1: बहुत मेहनत करनी
0: टूटना
1: पड़ेगी,
0: नहीं होता है।
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग
1: जी
0: भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था।
1: जी
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
1: दिग्गज
0: स्टॉलवॉर्ट्स हैं,
1: रहे
0: मतलब
1: जी
0: इतने
1: वो
0: बड़े दिग्गज
1: जी
0: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
1: जी
0: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैं

0: उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छे हैं,
1: जी
0: उनका भी वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो
1: जी
0: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
1: अच्छा जी
0: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
1: जी
0: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और
1: अच्छा
0: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को।
1: अच्छा
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
1: जी
0: वो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
1: हाँ
0: अंतरा भूपेंद्र ने गाया है।
1: अच्छा
0: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी,
1: जी
0: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी,
1: जी
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं
1: जी
0: पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात
1: क्या
0: दिन,
1: बात है
0: मौसम फिल्म का गाना
1: जी
0: उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं,
1: जी
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
1: जी
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था।
1: जी
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं। बोले कहां
1: जी
0: से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
1: जी
0: हूं। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर। फिर
1: मिलने
0: ऊपर
1: की चाहत ने मिला
0: नहीं,
1: दिया
0: मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा
1: पर
0: तो वो अंदर से
1: लिफ्ट
0: आ,
1: में ही मिल
0: लेकिन वो
1: गए।
0: नीचे ही मिल गए।
1: जी जी
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
1: जी
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था, राम लक्ष्मण जी ने से भी उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं।
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू पे, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो
1: हाँ
0: मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं
1: जरा
0: दो लाइन आपको सुना के, एक अकेला इस शहर में रात में।

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम कर रहे हैं,
1: और
0: इन सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

नमस्कार, एफएम में 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र, और मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश वट। श्रोताओ, समय हो चुका है शाम के ठीक 5 बज चुके हैं, और अब वक्त हो चला है युवा श्रोताओं की पसंद के विशेष और खूबसूरत कार्यक्रम युव वाणी का।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यू वाणी और मैं हूं आपके साथ अंकिता। और हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर आपका बेहद पसंदीदा सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम।
1: और मैं हूं रचना। श्रोताओं, हर बार की तरह आज भी हम इस खास महफिल के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, जहां सुरों के संग बहती है दिल की भावनाएं, ताज़ा होती है खूबसूरत यादें और महसूस होता है एक अनूठा अपनापन। क्योंकि जब आप अपनी पसंद के नगमे और ढेर सारा स्नेह हमें भेजते हैं तो ये सफ़र सिर्फ गानों का नहीं रहता, ये बन जाता है दिलों को जोड़ने वाला एक रेशमी धागा, है ना?
1: सच कहा अंकिता। कोई गीत बीते लम्हों की खुशबू ले आता है तो कोई चेहरे पर एक

0: प्यारी सी मुस्कान सजा देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल रचना, इसी के साथ हम करते हैं शुरुआत। और श्रोताओं, हमें सोशल मीडिया पर फरमाइश भेजी है पद्मा टॉकीज ने नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने, सियेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जिया उर रहमान ने, छत्रपति संभाजीनगर से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश खोड़के ने।
0: इसी क्रम में हमें गीतों की फरमाइश की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कमिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा ने, गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज भ्याण ने, कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा ने। तो श्रोताओं, सुनते हैं आज की फरमाइश का पहला गीत।

0: ये बड़ा ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना था फिल्म यार या टू से, जिसे गाया था अरिजीत सिंह ने और संगीतकार और गीतकार थे मनन भारद्वाज। रचना बड़ा ही खूबसूरत गीत था। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमें फरमाइश भेजी है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रचना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। तेलंगाना भोनगिर से मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, फजान, फरहान और समायरा आजमीन गुड़िया ने। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल ने। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह ने। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव ने। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसकाफ, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ ने। ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल ने। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम वर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। ग्राम पेड़पा पोस्ट कलानी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार, कौशल्या अहिरवार, मोहनी अहिरवार और शिवा अहिरवार ने। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर अगला गीत।

एक खूबसूरत गीत अभी आपने सुना था फिल्म जीरो से, जिसे अपनी आवाज़ दी थी अभय जोधपुरकर ने, संगीत दिया था अजय अतुल ने और गीतकार थे इरशाद कामिल। वाह रचना, इतना सुंदर गीत सुनो तो मन प्रसन्न हो जाता है, और ऐसे ही बड़े ही मज़ेदार गीत हम आज सुनने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें फरमाइश भेजी है सांकरा सोमनी जिला राजनाथ गाँव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंत तिन, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश, नेहा देवी साहू और देवेंद्र प्रताप साहू ने, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका, वाणी मिस्किन, आर

0: और समस्त मिस्किन परिवार ने तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और लक्ष्य ने, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने, सल्लार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन ने, गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जेतेक और मीका विर्क ने।
1: और इसी क्रम में हमें गीतों की फरमाइश की है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल ने, बटिंडा रोड मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने, मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रणीता सिद्धांत गवहानकर और अर्जुन गवहानकर ने। तो श्रोताओं, पेश है आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अभी ये सुंदर गीत आपने सुना फिल्म दिल से, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी ए आर रहमान ने, संगीत दिया था ए आर रहमान ने और

0: गीतकार थे गुलजार। वारचना, गीत में ऐसी ताकत होती है ना कि आपका पूरा दिन भी वो एकदम पॉजिटिविटी से भर देते हैं।
1: बिल्कुल अंकिता।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमें फरमाइश भेजी है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि, परी और प्रिंस एकांश गवाणकर ने, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल और निशा ने, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रजेश संघई प्रीतेश संघई और समस्त संघई परिवार ने, जालंधर सिटी से सोनू रविराज और गुलशन लकी ने, गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव, ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी शमीम अंसारी माहे नूर अंसारी नसरीन अंसारी और समा अंसारी ने,
1: और इसी क्रम में हमें इस गीत की फरमाइश भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन ने, धनूरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और आयान ने, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी ने। श्रोताओं, इन्हीं की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म जब किसी से प्यार होता है से, जिसके गायक थे कुमार सानू, लता मंगेशकर, संगीत था जतिन ललित का और गीतकार थे आनंद बख्शी।
1: बिल्कुल रचना, हम गीतों की बात कर रहे हैं और कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी वही गीत हमें किसी खूबसूरत याद तक ले जाता है। संगीत की यही तो खासियत है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमें फरमाइश भेजी है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने। मोरटका माफी जिला खंडवासी जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल ने। गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दातर सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने।
0: इसके साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार ने। गांव झिकड़िया तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान से सिद्धू सिंह राजपूत ने। गांव फारासी जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार ने।
1: इसी के साथ मेरठ केंद्र से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह ने। गाँव जगदीशपुर शिवगढ़ रायबरेली से पिंकी और रिंकी। और इसी के साथ पेश है हमारी कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म सुपर 30 का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था उदित नारायण, श्रेया घोषाल ने, संगीत दिया था अजय अतुल ने और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। इसी के साथ बड़े ही खूबसूरत गीतों की फरमाइश हमें भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने, ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने, उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से बालू आप्पा और ज्योति गढ़बले ने, गांव नंगलखेड़ा फंगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष शर्मा ने, छेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, नीटू लाड़ो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद्र मल्होत्रा ने, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का ने, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मिराज जाह ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम नाबदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, पवन सिंह, संजय आदित्य, माही सार्थक जाट और आदेश जाट ने, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी ने, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू ने। तो इन्हीं की फरमाइश पर पेश है आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, ये दिल को छू जाने वाला गीत अभी आपने सुना फिल्म ताल से, जिसे अपनी आवाज़ दी थी आशा भोसले, आदित्य नारायण, ऋचा शर्मा ने, खूबसूरत संगीत दिया यार रहमान ने और गीतकार थे आनंद बख्शी। दोस्तों, ये सुरों का सफ़र अभी जारी है और हम आगे बढ़ते हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर, जो हमें भेजी है कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सोनिका दले ने, पुनावले पुणे से अजय सोवणे, करिश्मा, अविका और विशाखा ने, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और सूरज कुशल वर्मा ने, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अश्विका तन्मय गजभिका ने, उज्जैन से शंभु दयाल ने, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिका आशिफ शेख ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय, शुभम, पवन और के संजीव डाबेराव ने, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेगलानी, बबीता मेगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

0: दोस्तों, हमारे आज के खूबसूरत सफ़र में आपने सुना ये खूबसूरत गीत फिल्म एक विलन से, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ दी अंकित तिवारी ने, संगीत दिया अंकित तिवारी ने और गीतकार थे मनोज मुंतशिर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं श्रोताओं हमारी फरमाइश की ओर, और हमें फरमाइश भेजी है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव दीवान, राधे भाविका डिंगरा ने, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा ने, पैराडाइज कॉलोनी उमरावती से सईद भाई, सुफियाना, अनस और आयशा ने, सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीब बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया ने, सुंदर नगरी दिल्ली से मोहम्मद कौसर नियाजी, मोहम्मद फैजान नियाजी और मोहम्मद रियान नियाजी ने, गांव जाखोड़ राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने, ग्राम पंखबंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरक राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल ने।
1: साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर ने, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी ने, जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह ने। तो श्रोताओं, पेश है आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म कारवां से, जिसे गाया, संगीत दिया और गीत दिए थे प्रतीक कुहाड़ ने। हम आगे बढ़ते हैं हमारी फरमाइश की ओर, और हमें फरमाइश भेजी है जिला मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरव, शाइना, योगेश शर्मा, निवान शर्मा और मंडी शर्मा ने, नई बस्ती गंजू दुंडवारा से यासीन हाशिम, नजमा बेगम हाशिम, तौसीफ हाशिम और तैमूर हाशिम कलीम अंसारी ने, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता और अन्विका तनुश्री गुप्ता ने, गाँव तांबोले तहसील मोहोल जिला सोलापुर महाराष्ट्र से संतोष कुमार नागने, सुजाता नागने, सूरज और समर्थ ने।
1: इसी के साथ फर्रुखाबाद साहबगंज चौहराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, पवन गोड़ और योगेंद्र नायक ने, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह और ज्योति सिंह ने, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने, कोचगिरी कॉलोनी कोपरगांव से सुरेश मालोड़े, वाशा श्रद्धा और मानसी मालोड़े ने, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल ने,
0: दमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल ने, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस डिकोस्टा ने, फालजी का पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी और टिवांशी खेड़ा ने, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर

सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना ने चकरभाटा कैंप से डीआर नारवानी, रवि चांदानी, खुशी नारवानी ने बेरची छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से और हर्षिता लाम से ने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम के अगले गीत पर।

0: श्रोताओं, आपने सुना यह खूबसूरत सा गीत फिल्म धड़क 2 से दर्शन रावत, जोनीता गांधी, रोचक कोहली की आवाज़ में, जिसके गीतकार थे गुरप्रीत सैनी और संगीत दिया था रोचक कोहली ने।
1: जी दोस्तों, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और समय हो गया है आज के इस सुहाने सफ़र को यहीं थामने का। उम्मीद है गीतों की ये शाम आपके दिन का थोड़ा और खूबसूरत बना दी गई होगी। और हाँ, जिनकी फरमाइश आज रह गई है उनसे एक छोटी सी गुजारिश है, नाराज़ मत होइएगा, आपकी फरमाइश हमने सुनी और नोट भी की है, बस आज समय ने थोड़ा साथ नहीं दिया।
0: आप सभी के साथ यह वक्त इतनी आसानी से बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। आपका यह प्यार ही शो की असली जान है। अपनी पसंद के गीत और प्यारे प्यारे संदेश हमें यूं ही भेजते रहिए ताकि हम हर बार आपकी फरमाइशों को यूं ही सजाते रहें।
1: बिल्कुल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन। मैं थी आपके साथ अंकिता
0: और मैं रचना।
1: नमस्कार।
0: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र, और मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश भट्ट। श्रोताओं, आकाशवाणी की पावन प्रस्तुति भजन संध्या में आपका हृदय से स्वागत है। श्रोताओं, सावन अपने पूरे सौंदर्य के साथ हमारे बीच है। बादलों से घिरा हुआ आकाश, धरती पर बरसती फुहारे, पेड़ों पर उतरती हरियाली और मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव, जय श्री महाकाल का जयकारा। सावन भारतीय संस्कृति में केवल एक महीना नहीं है दोस्तों, यह मन को भीतर की ओर मोड़ने का समय है, यह भक्ति का समय है, यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने का समय है, ग्रेटिट्यूड देने का समय है। और सावन के साथ हमारे सामने खुलने लगता है भारतीय पर्वों का एक सुंदर सिलसिला। सावन के सोमवार हरियाली, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आगे आने वाले अनेक पर्व, मानव प्रकृति और संस्कृति दोनों ही मिलकर कह रही हो अब जीवन को केवल जीना नहीं है, उसे उत्सव की तरह अनुभव करना है। और इसी अनुभव के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के बहुत सुंदर और मनोहारी भजन से, आज की भजन संध्या कार्यक्रम का।

श्रोताओं, सावन के सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माने जाते हैं। प्रातःकाल मंदिरों में जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राभिषेक और शिव नाम का जाप। लेकिन शिव आराधना का अर्थ केवल पूजा की विधि तक सीमित नहीं है। शिव का स्वरूप हमें बहुत

बहुत गहरी बातें सिखाता है, विष को अपने भीतर रोक लेना, अर्थात कठिन परिस्थितियों को संभालने की शक्ति, कैलाश पर विरक्त होकर रहना अर्थात आवश्यक और लालच के बीच अंतर समझना, और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करना अर्थात मन को शीतल रखना। शायद इसीलिए इसीलिए सावन में शिव के सामने खड़े होकर हम केवल उनसे कुछ मांगते नहीं, कभी कभी अपने भीतर कुछ बदलने की प्रार्थना भी करते हैं। और इसी भाव, इसी बदलने की चाह, इसी आध्यात्मिकता और इसी प्रेम और पवित्रता के भाव को आगे बढ़ाते हुए

श्रोताओं, सावन की खूबसूरत विशेषता यह भी है कि हमारी आध्यात्मिकता प्रकृति से अलग नहीं, हम हमेशा प्रकृति से जुड़े हुए महसूस करते हैं। धर्म, आस्था, संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं है। गंगा शिव की जटाओं में है, कैलाश उनका धाम है, नंदी उनके साथ है। वृक्ष, पर्वत, नदियाँ और जीव जंतु भारतीय आध्यात्मिक कल्पना का हमेशा से हिस्सा ही रहे। इसलिए जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो हमें जल की कीमत भी याद रखनी चाहिए। जब हम प्रकृति की हरियाली देखते हैं तो हमें पेड़ों की रक्षा भी करनी चाहिए, और जब हम नदी को माता कहते हैं तो उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। यह भक्ति का आधुनिक अर्थ है। पूजा के साथ संरक्षण भी हमें करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म को अगर असल रूप में देखा जाए तो धर्म की जड़ें कहीं ना कहीं शुरुआत होती प्रकृति से ही दिखाई देती है, और यही सत्य है। शिव ही सत्य है और शिव ही प्रकृति है, हम ये मान भी सकते हैं। इसी भाव के साथ चलिए सुनते हैं आज का अगला मनोहारी भजन।

श्रोताओं, अब सावन की इसी पावन ऋतु के बाद आने वाला एक ऐसा पर्व जो सभी के लिए बहुत प्रिय है, जिसने मंदिरों की घंटियों के साथ घरों में रिश्तों की हंसी सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं राखी या रक्षाबंधन। एक छोटी सी राखी, कुछ धागे, लेकिन लेकिन उसके भीतर वर्षों का स्नेह, बचपन की यादें और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का विश्वास। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं श्रोताओं, यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी सबसे बड़ी शक्ति है ये कहना या फिर ये सुनना या फिर ये विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ तुम मेरे साथ हो और हम हमेशा साथ रहेंगे। आज जब रिश्तों के लिए समय निकालना कठिन नहीं होता है और हम बेमुश्किल और बहुत ही मुश्किल से किसी रिश्ते के लिए समय निकाल पाते हैं, कहीं छुट्टियों पर जाते हैं परिवार वालों के साथ, उस समय ऐसा पर्व हमें वापस अपने परिवार के साथ ले आता है। हमें हमारे परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का, उन्हें समझने का, उन्हें अपनी चार बातें बताने का और उनकी चार बातें सुनने का अवसर देता है। इस रक्षाबंधन शायद एक संकल्प यह भी हो कि केवल रक्षाबंधन एक वचन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों, सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा का भी सम्मान है। और इसी सम्मान, इसी सुरक्षा, इसी स्वच्छ प्रेम और पवित्र रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं बहुत सुंदर सा, बहुत मनोहारी सा और बहुत प्यारा सा अगला ये भजन।

प्यारे श्रोताओं, रक्षाबंधन के बाद उत्सवों की इस यात्रा में आने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे ईश्वर जिन्हें केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि जीवन के अनेक रंगों के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। वृंदावन में वे मुरलीधर है, गोपियों के बीच प्रेम और आनंद के प्रतीक है, माता यशोदा के लिए नटखट कान्हा है और अर्जुन के लिए सारथी है, और कुरुक्षेत्र में वे कर्म, धर्म और कर्तव्य का संदेश देने वाले योगेश्वर गोवर्धनधारी चराचर विश्व के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। श्रोताओ, कृष्ण की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि उनका व्यक्तित्व जीवन के हर पक्ष से संवाद करता है। वे हमें बताते हैं, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होगी, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करते चल और फल की चिंता ना कर। इसी भाव को ध्यान रखते हुए कृष्ण को याद करते हुए सुनते हैं आज का अगला मनोहारी और कृष्ण भक्ति से रचा बसा यह अगला भजन।

श्रोताओं, सावन से शुरू हुआ यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा और फिर दीपावली, हर पर्व का अपना रंग है, लेकिन संदेश एक है, जीवन में प्रकाश बढ़ाइए। प्रिय श्रोताओं, इस सावन में जब भी मंदिर जाएंगे या फिर सावन के बाद भी, तो भगवान शिव से केवल अपने लिए कुछ ना मांगे, प्रार्थना करें हमारे भीतर धैर्य हो, हमारे कर्मों में करुणा हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो, हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, हमारे समाज में एक दूसरे के लिए संवेदनाएं बने रहें, क्योंकि यही तो भारतीय समाज की भक्ति की सुंदरता है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अंततः मनुष्य तक होकर जाता है, और हम तो हमारी संस्कृति में हमेशा कहते भी हैं, हमारे धर्म और हमारे आध्यात्म में कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है और नर नर में नारायण। हम जिससे मिलते हैं, जहां मिलते हैं, जब मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो इस ईश्वर, इस पृथ्वी और इस परमात्मा का ही रूप होता है, और हम में भी ब्रह्म है और सब में ब्रह्म है। इन्हीं मंगल कामनाओं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की भजन संध्या को यही विराम देते हैं। मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश भट्ट, आप सभी को करता हूं नमस्कार। हर हर महादेव, राधे राधे, पुनः नमस्कार। श्रोताओं नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र, और समय हो चला है ठीक शाम के 6:30 और अब वक्त हो चला है आज के विशेष कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं जरा कैलेंडर देखिए या फिर फोन की स्क्रीन पर देखिए आज तारीख क्या है। आज तारीख है 19 अगस्त, और आज का दिन हमें दो बिल्कुल अलग दिखाई देने वाली लेकिन भीतर से बेहद जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचने का अवसर देता है। श्रोताओं आज हम बात करेंगे तस्वीर की और इंसानियत की, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस, और आज ही है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस। मतलब दो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक है, एक वो तस्वीर जो हम आँखों से देखते हैं, फिर कभी फ़ोटो कैमरा से देखते हैं, और आजकल हम मोबाइल इंटरनेट पर देखते हैं, और एक वो चीज़ जो हमारे मानवीय स्वभाव का सबसे पहला, सबसे मूल और सबसे ज़रूरी स्वभाव है, मानवतावादी। जी हाँ, हम हर बात पर कहते हैं लोगों से थोड़ी तो इंसानियत रखो, इंसानियत सबसे ज़रूरी है, मानवता होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान इंसानियत ही होती, धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, समाज, भाषा, ये तो सब दोहरी और बात की बात है, लेकिन सबसे पहली जो पहचान मेरे ख्याल से होनी चाहिए वो होती है इंसानियत। तो श्रोताओं एक दिन हमें सिखाता है कि दुनिया को देखना कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा दिन हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में किसी दूसरे इंसान के दर्द को महसूस करना कितना ज़रूरी है। आज का कार्यक्रम इसी विचार पर है, देखने से समझने तक और समझने से संवेदना तक। तो श्रोताओं मैं हूँ आप सभी का उद्घोषक साथी यश भट्ट, और आपका ये कार्यक्रम फिल्म संगीत में हम सुनेंगे बहुत सारे फिल्मी गीत, लेकिन बात करेंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के विषय में। श्रोताओं हम रोज़ तस्वीर लेते हैं, मोबाइल निकालते हैं, एक क्लिक, एक तस्वीर की किचिक की आवाज़ और एक क्षण हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता, चाहे पहले के ज़मानों में वो रोल्स में होता था, रील्स में होता था, अब फिर कैमरा कंप्यूटर में होने लगा, और आजकल तो फ़ोन में, और आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से

तो शायद तकनीक और भी अच्छी हो जाए। लेकिन तस्वीर केवल किसी चेहरे को कैद नहीं करती दोस्तों, वह समय को रोक देती। एक पुरानी तस्वीर देखिए आप, तो उसमें केवल लोग नहीं दिखाई देते, उसमें एक पूरा समय दिखाई देता है, एक पूरा लैंडस्केप, एक पूरा टाइम लाइन दिखाई देता है। कपड़े, चेहरे, घर, सड़कें, त्यौहार, शहर, सब कुछ। यही कारण है कि फोटोग्राफी केवल कला नहीं, इतिहास का दस्तावेज भी है। 19 अगस्त 1839 यानी 19th of August 1839 को फ्रांस में लुइस डगोरे की विकसित की गई डगोरे पुराई प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे से जोड़ा गया। आज की स्मार्टफोन फोटोग्राफी तक हमें पहुंचने में लगभग 2 शताब्दी यानी 2 सदी यानी 200 साल से ज़्यादा का समय लगा है दोस्तों। कभी एक तस्वीर बनाने में बहुत लंबा एक्सपोजर लगता था, बहुत लंबा समय लगता था। हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े, हमारे अनुभवी लोग बताएंगे कि आज की जनरेशन को कि कितना मुश्किल होता था एक तस्वीर खिंचवाना एक ज़माने में। और आज अब लगता है कि एक सेकेंड में कहीं तस्वीर हम ले सकते हैं और लेते भी हैं। लेकिन एक बात नहीं बदली, उस समय भी तस्वीर की जो भावनाएं थे, उस समय भी जो तस्वीर की जो ताकत थी, आज भी वो ताकत, आज भी वो भावनाएं तस्वीर से जुड़ी हुई है। और दोस्तों चलिए आगे और बातें बढ़ाएंगे, आज की शुरुआत करते हैं फिल्मी गाने की सुंदर से, इस मनोहारी से और इस प्यारे से फिल्मी गीत के साथ।

श्रोताओं, तस्वीर की बात कर रहे थे हम और बात कर रहे थे मानवता की। श्रोताओं, मानवता तस्वीर कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े हुए हैं। हम कई बार बहुत सारी तस्वीर देखते हैं और उस तस्वीर को देखने के बाद हमारे मन के कई अलग अलग भाव जाग जाते हैं और वही तो मानवता है। मानवता का असली मतलब यही है कि आपके मन में मानवीय होने के सारे भाव हमेशा बने रहे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रेम हो, चाहे करुणा हो, और शायद कभी नफरत या फिर गुस्सा भी, क्योंकि ये सभी मानवीय होने के प्रमाण हैं। श्रोताओं, कभी कभी एक तस्वीर वह दिखा देती है हमें जिसे हजार शब्द भी नहीं समझा पाते। युद्ध का एक दृश्य, आपदा के बाद किसी परिवार का चेहरा, किसी बच्चे की मुस्कान, किसान के हाथ या सैनिक की आंखें, या किसी शहर की बदलती तस्वीर। फोटोग्राफी हमें केवल सुंदरता नहीं दिखाती श्रोताओं, वह हमें वास्तविकता से सामना भी कराती है। इसलिए फोटो पत्रकारिता ने दुनिया को अनेक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक जिम्मेदार तस्वीर सवाल पूछती है, हम क्या देख रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, हम इसके बारे में क्या करेंगे। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए और जिंदगी के और मानवता का से जुड़े हुए कुछ बहुत सारी बातों को और बहुत सारे भावों को इस गीत में आप सुनेंगे। सुनते हैं अगला सा गीत।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। शुदाओ शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे पास तस्वीरें बहुत है लेकिन यादें कम नहीं होनी चाहिए। यादें बहुत हैं, तस्वीरें भी कम नहीं होनी चाहिए। कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, कम होने चाहिए दुनिया के दुख दर्द पीड़ा तकलीफें, और बढ़नी चाहिए खुशियाँ हंसी उल्लास उमंग। चलिए दोस्तों इसी बात पर सुनते हैं आगे आज का अगला सुंदर सा बहुत मनोहारी सा गीत।

शुदा हुआ, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के साथ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन हर वर्ष 19 अगस्त को उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को सम्मान देने और संकटों से प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने के लिए मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि 19 अगस्त 2003 के बगदाद कैनल होटल बॉम्बिंग से जुड़ी हुई है, जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियंस एड वर्कर्स की मृत्यु हुई थी। श्रोताओ, मानवतावादी कार्यकर्ता वे लोग हैं जो अक्सर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बाकी लोग जाने से डरते हैं। युद्ध हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, भुखमरी हो, विस्थापन हो या कोई और मानवीय संकट, वहाँ किसी के हाथ में दवा होती है, किसी के हाथ में भोजन, किसी के पास पानी और किसी के पास बस एक भरोसा कि हम आपके साथ हैं, आपके संकट में आपके साथ हैं, आपकी परेशानियों में आपके साथ हैं, आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ हैं। श्रोताओ, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी होने के लिए कोई बड़ापन ज़रूरी नहीं है, कोई ताकत ज़रूरी नहीं है, बस विश्वास ज़रूरी है। मानवता के लिए काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े संगठन का हिस्सा हो। किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना भी मानवतावादी होना होता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी परेशान व्यक्ति को कुछ मिनट ध्यान से सुन ले, ये भी मानवता है। दोस्तों, आज हर कोई अपनी अपनी परेशानियां लेकर चल रहा है, सबके अपने संघर्ष है, सबके अपने स्ट्रगल्स है और सबकी अपनी विडंबनाएं हैं। आज अगर आपने किसी की मन की बात 5 मिनट अगर सुन भी ली और उसे दिलासा भी दिया कि हम आपके साथ हैं, मेरी नज़र में दोस्तों यह भी बहुत बड़ी मानवता है, किसी परेशान व्यक्ति को सुन लेना। क्योंकि इंसानियत की शुरुआत बहुत बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे व्यवहारों से होती है, छोटी छोटी चीज़ों से होती है। चलिए दोस्तों, बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब सुनते हैं आज का अगला खूबसूरत सा और मनोहारी सा प्यारा सा गीत।

ना हो तो फोन खोल लीजिए, फोन ना हो तो अपनी आंखों में कोई तस्वीर कैद कर लीजिए, लेकिन ऐसी तस्वीर जिसमें केवल सुंदरता नहीं कोई कहानी भी हो। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पर किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा जरूर करिए, चाहे कोई अजनबी हो और कोई अजनबी नहीं हो तो अपने परिवार वालों के लिए। और परिवार अगर दूर रहता है या फिर आप परिवार से दूर रहते हैं तो खुद के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन किसी एक व्यक्ति की दुनिया ज़रूर थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। आज का हमारा संदेश बस इतना है। कैमरा हमें दुनिया दिखाता है लेकिन इंसानियत हमें उस दुनिया के प्रति जिम्मेदार बनाती है, संवेदनशील बनाती है। इन्हीं विचारों के साथ आज के फिल्मी संगीत कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश वट, और जाते जाते दूर छोड़ जाते हैं आपको एक बहुत प्यारे से, बहुत मनोहारी से और बहुत सुंदर से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4-लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि

सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। तो दो अब सुनो चला है आज के कार्यक्रम विवरण कार्यक्रम। चलिए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की सूची दे दें। ठीक 7:21 पर आप सुनेंगे मालवी श्रोताओं के पसंद का विशेष कार्यक्रम माटी रिवाज और मालवी समाचार। साथ ही 8:15 पर कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। 8:45 पर दिल्ली से कार्यक्रम आप सुनेगा समाचार संध्या।

रात 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से कार्यक्रम न्यूज एट नाइट। रात 9:15 पर दिल्ली से ही आपको सुनाए जाएंगे उर्दू में समाचार, और रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम।

रात 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर भोपाल से रहेगा कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम। रात 11 बजे दिल्ली से ही आपको सुनाए जाएंगे हिंदी में समाचार।

चलिए दोस्तों, अब आपको कल यानी 20 अगस्त 2026 गुरुवार को प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की सूची दे दें। ठीक 5:50 पर शुरुआत होगी संकेत धुन के साथ। सुबह 6:45 पर विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता, और सुबह 7 आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन।

सुबह 7:20 पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, जो कि प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम रहेगा। ठीक 8:30 पर आप भोपाल से सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, जो कि शीर्षक रहेगा वतन का राग। साथ ही 9:30 पर उज्जैन से ही आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सिंहस्थ संवाद अमृत घाट बर से। ठीक 10:15 पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से ही आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत, जो कि सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही 11 बजे आप मुंबई से सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

0: दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से कार्यक्रम दोपहर समाचार। ठीक 2:30 पर आप मुंबई से सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे सुनेंगे मुंबई से ही कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 7:21 पर रहेगा मालवी की तारी गूंज। 8 बजे सुनेंगे कार्यक्रम भोपाल से सुर्खियों में और 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार संध्या। तो श्रोताओं, ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की सूची। नमस्कार।
1: थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। हर बहन के खाते में रक्षाबंधन के 250 रूपये के शगुन सहित कुल 1,750 रूपये पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया।
1: श्री राम वन गमन पथ और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। कैबिनेट की बैठक

0: ये लाडली बहना, चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया है। बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने मां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वसहायता समूहों की बहनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण, अपने आचरण में करुणामय और सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ ही जनता की निष्पक्षता, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करने का गहरा दायित्व भी आता है। नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से हलफनामा दाखिल कर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही नंदन नीलकेणी समिति के सुझाए बदलावों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत आज उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नानाखेड़ा शांति पैलेस, शांतिनगर नीलगंगा और शांतिनगर मंछामन इंदौर रोड का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने सड़क का लेवल एक समान रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क से मिट्टी हटाने, गड्ढों का भराव तथा नाले के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत हर साल करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
1: प्रदेश के डिंडौरी जिले ने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुलाई महीने में देश के 100 चयनित जिलों में डिंडौरी को नंबर 1 रैंक मिली है। जिले में कोदो कुटकी, प्राकृतिक खेती और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 1040 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 3 के तहत सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाएं 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आज भोपाल में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जलाशयों में मत्स्य निवेश, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और निवेशकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर इसे उद्योग और रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि नवाचार तभी तक सार्थक हैं जब वे प्रयोगशाला से निकलकर निर्माण स्थल तक पहुंचे और उसके अच्छे परिणाम मिले। उन्होंने ये बात

आज भोपाल में सतत अधोसंरचना कार्यशाला के दौरान कही। मंत्री ने नई तकनीकों को पहले परीक्षण और पायलट परियोजनाओं में आजमाने के बाद बड़े स्तर पर अपनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में टिकाऊ सड़क निर्माण, नई निर्माण सामग्री, कचरे के उपयोग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विशेषज्ञ

जा रहा है। अनूपपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती पर उनके सामाजिक न्याय व मानवता के संदेश के प्रसार के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास अभियान के तहत एडीआर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ में आकांक्षी विकास खंडों में विकास कार्यों की समीक्षा व बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को डिजिटल टूल किट का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने कुकरू हिल्स स्टेशन पर कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा देने और जल संरचनाओं के एकीकृत प्लान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीहोर में इछावर तहसील के मोगरा रोड पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने उतरे 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 सगे भाई थे। और खंडवा जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान व समरसता यात्रा का आयोजन कल 20 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।
6: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है मालवी श्रोताओं के पसंद के विशेष कार्यक्रम माटी री बात और मालवी समाचार का।

राम राम साहब, मैं दिया उमट आज आपकी अपनी ग्राम सभा में माटीरी बात में आप सभी लोग और को स्वागत है। कई हाल चाल है? चलो हाल चाल तो हर बार की तरह बढ़िया ही होएगा। मौसम भी बढ़िया हुई रियो है, सुहावनो भी हुई रियो है। जैसा मोर नाचे कोयल बोले ने साथ ही साथ चारों तरफ हरियाली रहे। सावन में उज्जैन और उज्जैन में सावन, बोला तो एक ही बात है पर हूँ आज बोलूँ कि थोड़ी थोड़ी सी तो अलग बात है कि सावन में उज्जैन और उज्जैन में सावन। ये सब बात तो चलती रहेगी, या मैं अलग अलग क्यों बोली रही हूँ बाद में बताऊँगा। पर पहला सुना मालवी समाचार, फिर और करांगा आगे की बात।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर जिला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना का तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा बहनों उनका खाता में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करी है। हर बहन का खाता में रक्षाबंधन का 250 रुपया का शगुन सहित कुल 1,750 रुपया पहुंचा है। यानी दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्य को भूमि पूजन और लोकार्पण करियो। एमें पहले उनने मां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्व सहायता समूहों की बहन के उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी होने से मुलाकात का दौरान यह बात बताई। अन्य अवसर पर उनने अधिकारी होने के अपने निर्णय में विवेकपूर्ण और उनका आचरण में करुणामय और सत्यनिष्ठा का प्रति अडिग रहवा की सलाह दी। राष्ट्रपति ने बताया कि उनने सौंपी गई जिम्मेदारी का साथ ही जनता की निष्पक्षता, विनम्रता और समर्पण का साथ सेवा करवा को गहरा दायित्व भी आए है। नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करता हुआ आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के एक और मजबूत बनावा की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करवा पे जोर दियो है। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय सचिव से हलफनामा दाखिल कर राधाकृष्णन समिति की सिफारिश होने के लागू करवा के लिए उठाया जा रहा कदम होने की जानकारी देवा के बतायो है। साथ ही नंदन नीलकंठी समिति का सुझाया बदलाव में भी इनमें शामिल करवा का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि के अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करता हुआ उनने बताया कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रही है। उनने बताया कि देश का विकास में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहे है और भारत हर साल करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर को सार्वजनिक निवेश कर रही है। वर्षा ऋतु में सर्पदंश की बढ़ती घटना होने के देखता हुआ नीमच जिला में पंचायत और वार्ड स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका तहत लोगों के सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम सहित जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवा के बताया गया है। रतलाम जिला का रावटी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करता हुआ कुल 133 किलोमीटर घी जब्त करियो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति मंडोरिया की टीम ने 3 प्रतिष्ठानों से घी का नमूना जांच के लिए लिया। जब्त घी की अनुमानित कीमत 67,000 रुपया है। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारी होने का तहत आज उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्य को निरीक्षण करियो गयो। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नानाखेड़ा, शांति पैले, शांतिनगर नीलगंगा और शांतिनगर मंचामन इंदौर रोड को निरीक्षण करियो। संभागायुक्त ने सड़क को लेबल एक समान रखवा, निर्माण कार्य में तेजी लावा और निर्धारित समय में काम पूरा करवा का निर्देश दिया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का अवसर पे आगर मालवा जिला में 18 अगस्त से 5 नवंबर तक समरसता संकल्प अभियान और यात्रा आयोजित की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना के जिला समन्वयक बनाया गयो। अभियान का दौरान जन जागरूकता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कलेक्टर ने यात्रा का दौरान कानून व्यवस्था, यातायात स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करवा का निर्देश दिया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट जारी करो है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, शहडोल, सीधी, रीवा और सतना में भी भारी बारिश को आसार है। मालवी समाचार समाप्त।

तो ई सुनिया आपने मालवी समाचार जिकी शुरुआत हम ग्राम सभा में हमेशा से शुरुआत से ही करा है। तो चलो आज माटीरी बात कार्यक्रम है ग्राम सभा में निमाड़ी गीत नी वजह से हुई सके कई। तो चलो थोड़ी और रोचक जानकारी आगे है पर पहला सुनो ये निमाड़ी गीत, फिर करांगा आगे की चटपटी सी बाता और घनी सारी जानकारी रोजगार के स्तर कई, पशु हो उनको ध्यान कैसा कई रखनो है, फसल के कैसा कई सुरक्षित रखनो है।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: तो ये निमाड़ी गीत सुनियो आपने। अब जो मैंने आपके बात बताई थी कि थोड़ी खास बात है आज का कार्यक्रम में, जो हर कार्यक्रम में रहे है, माटी दी बात हो या मालवी की तारीख गूंज हो, मैं हूँ या महाराज जैसा हमारा कोई साथी और हो, तो आज रिकॉर्डिंग लई हूँ मैं एक घनी खास, जो वाइस चांसलर है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का शिवशंकर मिश्र जी, जिनने बतायो है कि संस्कृत में किस तरह कई रोजगार का अवसर रहे है। उनसे बातचीत में मैंने जानियो है कि संस्कृत पढ़वा का बाद भी घना सारा रोजगार का अवसर, घनी सारी नौकरी हो और खुद को व्यवसाय चालू कर सका है, तो आप भी जानो कि संस्कृत सीखवा का घना सारा लाभ है और कई कई लाभ है, किस तरह कई सीखनो है सारी जानकारी हो। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु। सर, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, हम हमारे भारत देश की बात करें तो भारत देश में संस्कृत का क्या महत्व है?
3: जी दिया जी, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है। भारत वस्तुतः संस्कृति प्रधान देश है और इस संस्कृति के मूल में संस्कृत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है संस्कृतम संस्कृतिर मूलम, संस्कृति का मूल संस्कृत है, भारत की आत्मा है संस्कृत। यदि हम भारत को जानना चाहते हैं तो हमें संस्कृत को जानना होगा। हमारा पूरा संपूर्ण साहित्य, हमारे भारत का इतिहास, हमारे भारत का भूगोल, हमारे भारत का पूरा वैभव, हमारे भारत का विज्ञान अगर जानना है तो हमें संस्कृत जानना होगा, क्योंकि हजारों हजार साल से जो भी रचनाएं हुई वो संस्कृत में हुई। वेद संस्कृत में लिखे गए, पुराण संस्कृत में लिखे गए, स्मृति ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, सूत्र ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। अगर हमें भारत का दर्शन जानना है तो संस्कृत पढ़ना होगा, वेदांत जानना है, न्याय जानना है, सांख्य जानना है, मीमांसा जानना है, या और भी भारत की संस्कृति को जानना है, भारत का जीवन दर्शन जानना है, भारत की फिलॉसफी जाननी है तो हमें संस्कृत जानना ही होगा। मैं तो संक्षेप में ऐसे कह सकता हूँ कि संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। यदि हम संस्कृत को जानते हैं तो हम सच्चे अर्थों में भारत को जानते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कहा गया है बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण के और बिना कालिदास आदि महान कवियों के सचमुच भारत भारत नहीं है।
2: सर, आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए आप आज के समय में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता को आप किस प्रकार देखते हैं?
3: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्कृत क्योंकि भारत की प्राणभूत भाषा है, इसलिए भारत की समस्त प्रगति में, भारत के समस्त विकास के मूल में संस्कृत है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। संस्कृत पढ़ा लिखा विद्यार्थी जिसने भी संस्कृत का अध्ययन किया है उसको जीवन के विविध क्षेत्रों में रोजगार के उन्हें बहुत सारे अवसर हैं। कई बार इस तरह की धारणा या इस तरह का मिथ्या प्रचार समाज में किया जाता है कि संस्कृत में रोजगार नहीं है, बल्कि मैं इसका बहुत ही प्रबलता से दृढ़ता से खंडन करता हूँ। संस्कृत में विभिन्न प्रकार के रोजगार हैं। संस्कृत पढ़ने के बाद हम किसी भी क्षेत्र में उसी तरह रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं जैसे अन्य विषयों में। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को चाहे वह रिसर्च का क्षेत्र हो, वैदिक अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे वह कर्मकांड का क्षेत्र हो, चाहे वह सेना में धर्मगुरु का क्षेत्र हो, चाहे वह विभिन्न प्रकार के विषयों में शिक्षण का क्षेत्र हो, इसके अलावा भी संस्कृत पढ़ने के बाद ज्योतिष हमारे यहाँ बहुत ही अर्थकरी विद्या के रूप में ख्यात है। सारी दुनिया में आजकल ज्योतिष का प्रभाव बढ़ रहा है और ज्योतिष एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। इसी प्रकार योग विद्या जो इस समय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसको एक सार्वभौम पूरी दुनिया में फैला दिया है, उस योग के माध्यम से आज हजारों हजार लाखों युवा रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार का यह अर्थ करना ठीक नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ही नाम रोजगार है। रोजगार यह है कि हम स्वयं से यदि कोई सेवा कर रहे हैं, स्वयं के माध्यम से यदि हम किसी रोजगार का सृजन कर रहे हैं तो वह भी रोजगार है। और संस्कृत में संस्कृत इतनी व्यापक है, संस्कृत की इतनी व्यापकता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार स्वतः सृजित होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के किसी भी विषय को पढ़ने में जो रोजगार की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज्यादा अधिक संस्कृत के क्षेत्र में रोजगार का सृजन होता है। आज देश में लगभग 18 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्कृत अकादमियां हैं और आधुनिक सभी प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत के विभाग हैं जिनमें पढ़ाने के लिए आचार्य रखे जाते हैं, आचार्यों की नियुक्ति होती है। यह भी एक संस्कृत के अध्येताओं के लिए एक रोजगार का क्षेत्र है। अनेकों गुरुकुल हैं, वेदाध्ययन के लिए महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान जिसमें हजारों हजार विद्यार्थी वेदाध्ययन करते हैं जिनको पढ़ाने के लिए आचार्यों की आवश्यकता है। तो मैं ऐसा बहुत दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि संस्कृत अत्यंत प्रासंगिक है वर्तमान में। आजकल तो AI के क्षेत्र में भी संस्कृत का बहुत भविष्य देखा जा रहा है। तो इस समय संस्कृत को केवल एक प्राचीन भाषा के रूप में नहीं, संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी ही अधुनातन भी है। प्राचीनता के साथ अगर आधुनिकता का संगम देखना है तो उसका एकमात्र उदाहरण है संस्कृत भाषा।
2: ये बात आपने हमें बताई कि युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत भाषा को सीख कर भी, पर मेरा एक और प्रश्न यह आपसे है, नई शिक्षा नीति NEP के संदर्भ में संस्कृत शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है?
3: भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन कर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज अन्य विषयों के माध्यम से हमें संस्कृत पढ़ना ही होगा क्योंकि समस्त विषयों में आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी, जिन्होंने सबसे पहले अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। और इस नई शिक्षा नीति में समस्त विषयों में, चाहे वह विज्ञान का विद्यार्थी हो या कॉमर्स का विद्यार्थी हो, अर्थशास्त्र का छात्र हो या भूगोल का छात्र हो, सभी विषयों में संस्कृत की अनिवार्यता की गई है। सभी विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा गया है। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी को आज के वनस्पति विज्ञान के जो चिंतन है उनको भी पढ़ना है। और आज से हजारों साल पूर्व हमारे ऋषियों ने पर्यावरण के विषय में, वृक्षों और वनस्पतियों के विषय में क्या लिखा है उसे भी जानना है। आज की फिजिक्स को जानते हुए हमें महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत को भी जानना है। और जो पुराना ज्ञान है उस ज्ञान को सभी शास्त्रों के, सभी विद्या शाखाओं के लोगों को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को जानने की आज कल अनिवार्यता हो गई है। इसलिए मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से संस्कृत को जन जन तक ले जाने का एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया गया है। भाषाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को भी बहुत प्रमोट किया गया है। आज भारत सरकार ने अपने यहाँ IKS भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय का प्रणयन किया, साथ ही हिंदू स्टडीज एक इस कोर्स का आरंभ किया। इन दोनों विषयों में हम भारत की समस्त विद्याओं को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बहुत विश्वास के साथ कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से संस्कृत का साक्षात और परंपरा सभी अध्येताओं के लिए उसका ज्ञान अनिवार्य हो गया है। इसलिए संस्कृत अभी अत्यंत प्रासंगिक है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी शोधार्थियों के लिए और सभी प्राध्यापक आचार्यों के लिए।
2: आम लोगों के लिए संस्कृत सीखना कितना सरल है और वे इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं?
3: मैं इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहूंगा कि भारत

0: में रहते हुए प्रत्येक भारतीय को संस्कृत आना चाहिए। यदि संस्कृत आप पढ़ेंगे तो आप सही अर्थों में भारत को समझेंगे, और संस्कृत पढ़ेंगे तो जो हमारे ऋषियों का चिंतन है, हमारे आचार्यों का जो योगदान है, उसे भी हम समझ सकेंगे। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, उसे हमने प्रचारित ऐसा कर दिया है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, लेकिन संस्कृत अत्यंत सरल भाषा भी है। इसके दोनों स्वरूप हैं। कठिन, जब इसके कठिनता का स्वरूप देखेंगे तो यह कठिन है, लेकिन इसके सरलता का स्वरूप देखें तो यह अत्यंत सरल है। अभी जन जन में संस्कृत को का व्यवहार लाने के लिए सभी लोग संस्कृत को सीखें, सभी लोग संस्कृत को समझें, इस अभियान में संस्कृत भारती ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। संस्कृत भारती एक ऐसा संगठन है जो आपको एक सप्ताह में, 15 दिन में, एक महीने में संस्कृत बोलने का अभ्यास करा देता है। आप बहुत सरलता से संस्कृत में व्यवहार करने लगते हैं। बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं, छोटे छोटे लघु लघु पुस्तिकाएं हैं, जिनके माध्यम से व्यवहार के अवसर पर आप संस्कृत को सीखते हैं। और जब आप व्यवहार की दशा में संस्कृत सीख जाते हैं तो उसी सीखने के क्रम में आप शास्त्र को भी समझने लगते हैं। सत्य यह है कि यदि आपने संस्कृत सीखी है तभी आप गीता पढ़ सकते हैं, अगर आपने संस्कृत सीखी है तभी आप रामायण पढ़ सकते हैं, अगर आपने संस्कृत सीखी है तभी आप भागवत आदि पुराण पढ़ सकते हैं। यदि आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप चाणक्य को समझ सकते हैं, वेद व्यास को समझ सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि को समझ सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत जानना अत्यंत आवश्यक है। और आजकल बहुत सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत संभाषण के कक्षाएं भी चलाई जाती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से संस्कृत बोलने का व्यवहार सिखाया जाता है। तो यह अत्यंत सरल है, इसके बहुत सारे अवसर हैं। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूंगा, बालकों से लेकर के वृद्धों तक, बालकों को, युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, वृद्धों को, ज्येष्ठों को, कनिष्ठों को, सभी को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप संस्कृत अवश्य सीखें। अगर आप संस्कृत सीखेंगे तो सही अर्थों में भारत के आचार्यों को, ऋषियों को और भारतीयता को सच्चे अर्थों में समझ सकेंगे।
1: आपने जो संदेश हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को दिया है, आकाशवाणी के माध्यम से जो युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई है कि संस्कृत सीखना अति सरल भी है और संस्कृत सीखना आवश्यक भी है। इसी के साथ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी, जो भ्रांतियां आज के युवा में फैल रही है। संस्कृत के बारे में जो कहा जाता है, अक्सर मैंने सुना भी है कि संस्कृत केवल धार्मिक भाषा है, क्या यह धारणा सही है या गलत है?
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि संस्कृत के प्रति विरोध की मानसिकता रखने वाले लोगों ने, संस्कृत के प्रति जो असहिष्णु थे ऐसे लोगों ने संस्कृत को एक धर्म की भाषा माना, और संस्कृत को एक वर्ग की भाषा कह करके, संस्कृत को एक जाति विशेष की भाषा कह करके, संस्कृत के का जो समग्र स्वरूप था उसको तिरोहित करने का दुष्चक्र किया था। वस्तुतः संस्कृत मात्र धर्म की भाषा नहीं है, संस्कृत ज्ञान की भाषा है, संस्कृत विज्ञान की भाषा है, संस्कृत गणित की भाषा है, संस्कृत ज्योतिष की भाषा है, संस्कृत योग की भाषा है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि हमको भास्कराचार्य के ग्रंथों को पढ़ना है, ज्योतिष के बड़े बड़े लीलावती ग्रंथ को पढ़ना है, या हमें योग सूत्र पढ़ना है, या हमें मीमांसा का सूत्र पढ़ना है, गौतम का सूत्र पढ़ना है, तो ये सारे विषय कर्मकांड नहीं है, ये केवल धर्म की भाषा नहीं है, यहाँ पर ये विशुद्ध रूप से विज्ञान के विषय हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि महर्षि गौतम ने अपने ग्रंथ को लिखते समय 16 पदार्थों की चर्चा की, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। अब आप विचार कीजिए कि इन 16 पदार्थों में धर्म से जुड़ा हुआ कौन सा पदार्थ है। प्रमाण तो ज्ञान को बताने का साधन है, प्रमेय जो है वह ज्ञान का विषय है, ये सारे विषय विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक हैं। महर्षि कणाद ने परमाणुवाद के सिद्धांत को बताया, विशेष नामक एक पदार्थ की परिकल्पना की। ये सारे विषय को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत में कर्मकांड का या धर्म का जो पक्ष है वह बहुत सीमित है। ज्यादातर विषय, समस्त विषय ज्ञान और विज्ञान के हैं। समस्त वैदिक वांग्मय, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सभी मंत्रों का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो हमें एक विज्ञान के दर्शन होते हैं, और विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत स्वयं में एक वैज्ञानिक भाषा है। आप महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को देखिए, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की जब रचना की तो भाषा विज्ञान का यह बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें आपको

0: कहाँ मिलेगा? ये तो भाषा का ग्रंथ है, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ संस्कृत के प्रति विरोधी भावना रखने वाले लोगों ने संस्कृत को धर्म से जोड़ करके, संस्कृत को जाति से जोड़ करके, संस्कृत को किसी वर्ग विशेष की भाषा जोड़ करके, संस्कृत को पूजा पाठ और कर्मकांड की भाषा बता करके संस्कृत का जो एक पूरा वांग्मय था उसको छिपाने का दुष्चक्र किया है, दूषित प्रयत्न किया है। मैं बहुत दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है, संस्कृत विज्ञान की भाषा है, संस्कृत कॉमर्स की भाषा है, संस्कृत अर्थशास्त्र की भाषा है, संस्कृत ज्योतिष की भाषा है, संस्कृत योग की भाषा है, संस्कृत केवल धर्म की भाषा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि संस्कृत को पढ़ने से धर्म का ज्ञान अवश्य होता है, क्योंकि जो धर्म का चिंतन, धर्म का विषय, नीति का विषय, आचरण का विषय, सदाचरण का विषय है, जब इनकी चर्चा करेंगे तो संस्कृत स्वयं में संस्कृत का की उपस्थिति वहां हो जाती है। संस्कृत धर्म की भी भाषा है, लेकिन ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म की भी भाषा है।
1: आपने हमारे आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी संस्कृत के विषय में दी, जो भ्रांतियां फैली है उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही मैं आज का अंतिम प्रश्न ये करना चाहूंगी कि सावन के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का क्या महत्व है?
0: कालगणना की दृष्टि से तो यद्यपि भारतीय समस्त मासों का अपने अपने स्तर में बहुत विशेष महत्व है, भारतीय कालगणना में सभी मासों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन श्रावण की महिमा इसलिए विशेष है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की अर्चना का विशेष महत्व है। इसलिए इस मास का महत्व है कि इस मास में भगवान शिव को यह श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है, और इस महीने में जब हम भगवान शिवलिंग में दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र आदि के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करते हैं तो भगवान सद्या प्रसन्न होते हैं। भगवान का एक नाम है आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने जो प्रसन्न हो जाएं। भगवान शिव अत्यंत शीघ्रता से भक्त की प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। इस श्रावण मास में के बारे में एक पौराणिक कथा यह भी आती है कि समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला था उसको भगवान शिव ने इसी मास में ग्रहण किया था, इसलिए भी इस मास का महत्व है। व्रत और उपासना की दृष्टि से भी श्रावण मास की अत्यंत महिमा है। लोग श्रद्धालु भारतीय जनमानस हर सोमवार को व्रत रखते हैं, भगवान शिव की अर्चना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, और नदियों का जो पवित्र जल है उसको कांवड़ के माध्यम से कांवड़ लाकर, इसी महीने में कांवड़ की यात्रा होती है, लोग गंगा जी में, नर्मदा जी में, यमुना जी में जा करके वहां का पवित्र जल ला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दृष्टि से इस मास की अत्यंत महिमा है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रावण के बारे में, श्रावणे मास यह भक्त्या पूजयेत शंकरम हरम तस्य पुण्य फलम देवी बक्षे श्रुण बरानने। श्रावण के महीने में भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जो भगवान शिव का भजन करता है, उनका पूजन करता है, उसे तस्य पुण्य फलम, उसके किए गए जो कर्म हैं उन पुण्यों का सद्या फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। तो इसलिए इस मास की महती महिमा है, और शिव जी की उपासना हमारे देश में, हमारे भारतीय जनमानस में शिव अत्यंत प्रिय देवता हैं। सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, चाहे वह विद्यार्थी हों, चाहे वह उपासक हों, चाहे वह साधक हों, चाहे वह वृद्ध हों, सभी लोग शिव की उपासना करते हैं। कहते हैं कि विद्या की कामना हो तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए श्रावण मास का अत्यंत महत्व है। हम सभी लोगों को भगवान शिव की अर्चना, पूजा और उनकी उपासना करनी चाहिए।
1: यह सुनियो हमने संस्कृत का महत्व का बारे में, और संस्कृत के पढ़ के हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कई सुधार ले सका है। घना सारा रोजगार का भी अवसर संस्कृत भाषा के सीख के मिले है। अब राजा विक्रमादित्य और महाकाल की एक लोक कथा है कि लोक मान्यता में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य को नाम महाकाल की भक्ति से जोड़ियो जाइए। कथा में बतायो जाए है कि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन महाकाल की आराधना करता था और प्रजा की सुख समृद्धि का लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता था। सावन में यानी कथा को संदेश, राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सच्ची श्रद्धा और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है, का पीछे कई लोक मान्यता और प्रचलित है। लोक कथा का अनुसार महाकाल के उज्जैन का रक्षक और नगर का आराध्य देव का रूप में प्रस्तुत करियो जाए है। जदे सावन की पहली बारिश उज्जैन की धरती के

भिगोई है, जदे महाकाल की नगरी में हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे है। मालवा में सावन खाली पूजा को महीनों नहीं है, बल्कि लोकगीत, झूला, हरियाली और मिलन को महीनों भी माने जाए हैं। गांव होर में महिला होर सावन का गीत गाए है और पेड़ पे झूला भी पाड़े है। और साथ ही जैसे ही मैंने करो जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, शुरुआत करी थी कि सावन में उज्जैन और उज्जैन में सावन, दो ही चीज़ अलग अलग हुई है। एक बात आज बात करा तो आज है फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। फोटोग्राफी खाली तस्वीर खींचवा की कला नहीं है, बल्कि बीतता हुआ समय के संजो के रखवा की कला है। एक तस्वीर में कई का व्यक्ति की मुस्कान, कोई सी संस्कृति तो कई का स्थान को इतिहास और किसी पल की भावना हमेशा के लिए सुरक्षित हुई जाए है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हमें यही याद दिलाए है कि कैमरा की नज़र से दुनिया के देखनो और ओके खूबसूरत पलों के सहेजनो ही एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य। जैसे फोटो हों जितनी खूबसूरत रहे उतनी ही खूबसूरत जिंदगी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि फोटो जिस तरह से हम एक जगह रख दा और कि जदे भी देखा जदे हमारे अच्छो लगे तो अनी तरह से हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारा काम में सुंदरता आनी चाहिए। यही मैं मानूँगा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस को उद्देश्य रहे। विश्व फोटोग्राफी दिवस का अलावा आज विश्व मानवतावादी दिवस भी है। तो मानवता आप में हम में घनी सारी है, तो एक ही बात हम आज नहीं करूँगा, पर आज बात करूँगा खेत में पानी जमा नहीं होवा दे। आज बात करांगा खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान किस तरह के रानो है। सावन में कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए, लगातार बारिश का दौरान खाद डालवा से बचनो है, तो ज़्यादा बारिश होवा का कारण भी फसल और ख़राब हो जाए है। तो अतिरिक्त पानी निकालवा के लिए अलग व्यवस्था रखो। खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान रखो, क्योंकि समय पे फसल की निंदाई ने ख्याल रखनो पड़े जैसे कि अच्छी फसल हुई है। सावन में कृषि वैज्ञानिक से सलाह, क्योंकि सावन का महीना में बारिश भी ज़्यादा हो ये और उसकी वजह से घणो नुकसान हो जाइए, फसल ख़राब हो जाइए, मेहनत बर्बाद हो जाइए। तो लगातार बारिश का दौरान खाद डालवा से बचनो है, माने कि बारिश का टाइम पे खाद फसल और में नहीं डालनो है, क्योंकि बारिश में खाद फसल मैंने फसल खाद में एक बात रहे। या बात हमने करी फसल की, अब थोड़ी बात करा पशु और की, क्योंकि टाइम भी होवा वालों है, घणो कम टाइम रहे जमें सारी जानकारी उन भी देनो रहे पशु होर की। तो भारी बारिश ने आंधी तूफान की चेतावनी रे, तो पशु होर के सूखी ने साफ जगह पे बांध के रखो, पीवा को पानी साफ सुथरो ने खावा की भी समुचित व्यवस्था करो। बारिश का टेम में फसल का साथ साथ पशु के चारा का भी सूखी ने साफ जगह पे रखनो है। पशु होर को टेम पे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच को भी ध्यान रखनो है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मिट्टी की ने फसल की जाँच के अनुसार ही कीटनाशक डालो। ऐसे ही पशु का बारे में अगर हूँ बताऊँ तो ज़्यादा से या कोशिश करो कि उनके स्वस्थ भोजन और उनका स्वास्थ्य को ध्यान रखो, क्योंकि मौसम बिगड़ भी सके है और पशु उनको ध्यान रखनो आपकी जिम्मेदारी है और हमारी भी। प्राकृतिक खाद जो मलमूत्र से जानवर का बने हैं उनको उपयोग करो, क्योंकि खेती और पशुपालन एक दूसरा से जुड़ा हुआ रहे। अगर हम खेती करा तो पशुपालन अपने आप हम कर सकाए, घना सारा रोजगार का अवसर रहे और घनी सारी बाता, घनी सारी लोकमान्यता, ऐसी सब बात आज हमने करी। और एक जाते जाते एक बात और यह बताऊँ मैं कि फसल ने प्रकृति को स्वास्थ्य सब सही रहे, तो एक मनुष्य को स्वास्थ्य सही रहे, आपको स्वास्थ्य सही रहे, मारो स्वास्थ्य सही रहे। घनी सारी बात हुई है, थोड़ी बहुत संस्कृत के लेके जानकारी हुई है, पर एक बात और कि एक तस्वीर खाली दृश्य के कैद नहीं करें, बल्कि समय, इतिहास, भावना और समाज की कहानी भी बोले है। कई बार एक तस्वीर हजार शब्द और किसे भी ज़्यादा प्रभावशाली संदेश दे दे है। आजकल का टाइम देखता हुआ एक घणो महत्व है, मोबाइल कैमरा और डिजिटल तकनीक ने फोटोग्राफी के हर व्यक्ति तक पहुँचाई दी है। आज तस्वीर शिक्षा, पत्रकारिता, विज्ञापन, पर्यटन, कला, विज्ञान ने सोशल मीडिया का क्षेत्र में घनी छाई रही है। तो हमारा बिल्कुल यकीन है कि आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, घना सारा सोशल प्लेटफॉर्म उन पर एक्टिव होएगा, तो का साथ ही घनी सारी नौकरी उनकी भी तैयारी कर रहा है, घना सारा बिजनेस भी कर रहा है। पर हूँ आपके दुआ एक रोजगार को घणो ही अच्छा अवसर कि पशुपालन और खेती से बड़ो रोजगार कहीं नहीं है। तो चलो टाइम हो गया है 7:57 हो गया है, 58 हो जाएगा, 59:08 हमारी ग्राम सभा खत्म हो जाएगी, पर टाइम भी हो गया है, पर टाइम आपके याद भी रखना है। आज हमारा एक ही गीत बजे हुए, टाइम भी कम थो, जानकारी भी देनी थी, घनी सारी बात भी

निधि, बात तो हमने खैर कर ली है, पर आप याद रख जो 7:21 से 8 बजे तक आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से 102.5 MHz पे, ने साथ ही साथ आप मोबाइल का प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन एयर ऐप भी डाउनलोड कर सको है, ओ पे भी आप सुनी सको है। ने साथ ही साथ एक बात और जाता जाता मैं बोल दूँ, थोड़ो घणो टाइम है फिर जावा को टाइम हुई गयो है, कि टाइम नहीं भूलना है, 7:21 से 8 बजे तक। सावन चल रहे है, व्रत भी चल रहा होगा, घनी सारी बात भी होती होगी, सावन में घनी सारी लोक कथा उनमें हम सुनाए, लोक मान्यता उन भी है, भगवान शिव का दर्शन भी रहे, तो जल्दी उठ के स्नान भी रहे, इसी घनी सारी लोक मान्यता, लोक कथा, व्रत और बहुत सारी जानकारी हो सावन में आपके मिलेगी ग्राम सभा से आकाशवाणी उज्जैन का केंद्र से। राम राम साहब, नमस्कार।

0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी।
3: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
4: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवे को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स को 4th लाइन 3rd लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो ये है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
3: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने

0: की बात कही गई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है। तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
1: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहां पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहां सीमेंट के हो और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी वही है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा।
0: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमिड्डी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और अनाज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही है, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल, जो भी उनकी चीज है, वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात या आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के लिए जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते रूट कम करें, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
0: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे?
1: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में, हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बड़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे, महाराष्ट्र जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
0: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और श्रोताओं, आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
1: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहां की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहाँ नहीं है वहाँ पहुंचाया जाए। मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुम्मेडपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई विजयवाड़ा रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे दो तीन टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकैट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सेंचुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दौर की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।
0: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1 से 1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है अब?
1: पिछले करीब 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे, और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है। अगर एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हुई है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी, एक माल गाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे, अगर आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
0: श्रोताओं, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है, तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
1: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए है। और तीसरा यह है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है जैसे अभी रेलवे में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हुए हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
0: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है, लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
1: इसमें 2 पहलू है, एक तो आपने यहाँ गति जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था, ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ। तो और भी

0: सर क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते हैं। जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती हैं क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है। लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है, पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है। कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से गति जब होती है तो आपका कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा, बहुत कम शब्दों में?
0: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री में सामान तो पड़ा है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे, जिसे कहते हैं, मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए पहुंचना कठिन होगा।
1: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र, और मैं हूं आप सभी का उद्घोषक साथी यश वट। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आज किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं करेंगे, न किसी बड़े आविष्कार की बात करेंगे, न किसी हिस्टोरिकल इवेंट या फिर किसी राजनीतिक ऐतिहासिक घटना की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन जिनकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है। सोचिए, जब सुबह आप घर से निकलते हैं तब सड़क साफ़ करने वाला व्यक्ति शायद उससे पहले अपना दिन शुरू कर चुका होता है। अब जिस बस में बैठते हैं उसका चालक, उसका ड्राइवर शायद आपसे पहले अपने काम पर पहुँच चुका है। आपके घर तक दूध पहुंचाने वाला, अखबार देने वाला, चाय बनाने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, कुरियर लेकर आने वाला, ये सभी लोग हमारी ज़िंदगी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके बिना हमारी कहानी अधूरी है। श्रोताओं, फिल्मों में हम अक्सर नायक को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में हर दिन हमारी कहानी में दर्जनों छोटे छोटे नायक यानी छोटे छोटे हीरोज़ आते हैं। किसी को मेडल नहीं मिलता, कोई हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन उनका काम ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारी ज़िंदगी को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब इसी एहसास, इसी बात की हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आज का बहुत सुंदर सा, मनोहारी सा, प्यारा सा पहला गीत।

श्रोताओ, अगली बार जब आप किसी भी डिलीवरी पर्सन से मिले, जब कोई भी गिग वर्कर्स आपके दरवाजे पर आए, आपको डिलीवरी पहुंचाए, आपको स्वादिष्ट सा गरम गरम खाना समय पर आपके घर पर पहुंचाए, चाहे बारिश हो तेज, चाहे ठंड हो थुथुरती हुई, या फिर तेज गर्मी, तब आपके लिए स्वाद और मुस्कान जो दोनों लेकर आए गिग वर्कर्स, उन्हें हर बार ये नहीं बोलना थैंक यू, लेकिन सिर्फ पैकेज खोलने के बाद अगर आप उनसे ये पूछ लेंगे, बहुत गर्मी है, पानी लेंगे क्या, बहुत ठंड है, चाय लेंगे क्या, तो मुझे लगता है कि उनकी दिन भर की थकान बहुत आसानी से उतर जाएगी। सिर्फ किसी सफाई कर्मी को देखकर रास्ता बदलने के बजाय अगर आप उसे धन्यवाद कहें, उन्हें उनके किए गए श्रम की उचित सम्मान दें, तो मुझे लगता है कि उनका दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर का सुकून में बदल जाएगा। किसी सिक्योरिटी गार्ड को रात में ड्यूटी करते देखे तो याद रखिए कि जब हम सो रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी जाग रही है, और छोटी छोटी बातों में ही जिम्मेदारी बनती है, और छोटी छोटी बातों में भी ग्रेटिट्यूड बनता है। हम दिन भर में जितने भी लोगों से मिलते हैं, हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से परेशान है, सबकी अपनी अपनी विडंबना है, सबकी अपनी तकलीफें हैं, सबके अपने के स्ट्रगल्स हैं, मगर हम अगर किसी के कंधे पर अपना गर्म हाथ रख कर सिर्फ उससे यूं पूछ ले कि आप कैसे हो, ठीक हो, कोई समस्या है क्या, अगर कोई समस्या है तो हम हैं आपके साथ, तो मुझे लगता है कि आधी लड़ाई तो वो हौसला ही जीता देता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को और भी आगे बढ़ाएंगे, चलिए अब सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर एक दिन हम कोशिश करें कि दुनिया को दूसरे व्यक्ति की नज़र से देखें तो क्या होगा? सोचिए, एक रिक्शा चालक की नज़र से शहर कैसा दिखता होगा, एक विद्यार्थी की नज़र से उसकी परीक्षा का दिन कैसा दिखता होगा, एक बुजुर्ग के लिए अकेली शाम कैसी होती होगी, एक माँ के लिए अपने बच्चे की चिंता कैसी होती होगी। और शायद यहीं से एम्पैथी पैदा होती है दोस्तों। किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह समझना संभव नहीं, लेकिन उसे समझने की कोशिश करना संभव है। श्रोताओं, हम हमेशा बड़े कामों की बात करते हैं, लेकिन दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कई बार बहुत छोटी चीज़ें पर्याप्त होती हैं। ध्यान से सुनना, सम्मान से बोलना, धन्यवाद कहना, माफ़ी मांगना और किसी को बीच में न काटना, किसी के संघर्ष का मजाक न बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति को उसकी परिस्थिति से नहीं, उसकी इंसानियत से देखना। और यही सच भी है दोस्तों। हम जिंदगी में कहीं भी चले जाए, कितने भी बड़ी पोजीशन पर चले जाए, कितना भी पैसा, कितना भी रिसोर्स, कितने भी साधन संपन्न हो जाए, अंत में हमें एक आत्मीयता, मानवता और प्रेम करुणा ही अपनापन जगा पाती है। श्रोताओं, इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं आज का अगला और मनोहारी सुंदर सा और मस्ती भरा गीत।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। आएगी आएगी

0: किस पे आएगी?
1: शुदाओ, हम सभी अपनी जिंदगी के कहानी के मुख्य किरदार हैं, मेन हीरो, मेन कैरेक्टर। लेकिन हमारी कहानी सुंदर तभी बनती है जब उसमें दूसरों के लिए भी जगह होती है। इसलिए आज घर जाते हुए, अब जहां भी हो या फिर घर पर ही हो, तो किसी एक व्यक्ति को जरूर धन्यवाद कहिए जिसकी मेहनत को आप रोज देखते हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते, या फिर स्वीकार भी करते हैं तो उसका श्रेय उसे के नहीं देते, या फिर उस श्रेय को कभी देने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो मन ही मन में संकोच कर जाते हैं। शायद वो आपके माता पिता हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, दादा दादी, नाना नानी, या और भी कोई हमारे दोस्त परिवारजन हो। उनको उनकी धन्यवाद ज़रूर मिलनी चाहिए, उनको उनका श्रेय ज़रूर मिलना चाहिए। हर वो श्रेय उन्हें मिलना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के लोग हमारे लिए कर देते हैं। हर व्यक्ति को उसके मेहनत के लिए, उसका श्रम के लिए, उसका मेहनताना के साथ श्रेय ज़रूर मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब आपने किसी के लिए कुछ किया है और अगर वो सिर्फ पलट कर आपको बड़े प्रेम से थैंक यू कह दे, या फिर ये कह दे कि आपकी बड़ी सहयोग रहा आपका, आपके होने से बहुत चीज़ें बदली, बहुत अच्छा हुआ, तो आपका खुद का दिन कितना बन जाता है। दोस्तों, इन सभी की बातों को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अब आगे चलते हैं एक नए गीत के साथ।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल

0: नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
1: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यारे श्रोताओं, तो आज अपने आसपास थोड़ा गौर से देखें। शायद आपके घर के बाहर कोई सफाई कर्मी काम कर रहा हो, कोई गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, कोई चाय वाला आपके लिए चाय बना रहा हो, कोई ड्राइवर आपको मंजिल तक पहुंचा रहा हो। उन्हें देखकर बस एक पल रुकिए और सोचिए, इन लोगों की मेहनत मेरी ज़िंदगी को कितना आसान बनाती है। और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें धन्यवाद कह दीजिए थैंक यू, क्योंकि आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका ग्रेटिट्यूड उनके दिन को बहुत बेहतर बना सकता है। दोस्तों, महान बनने के लिए महान काम करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी किसी के लिए अच्छा इंसान बन जाना भी काफ़ी होता है। किसी को खुशी देना, किसी को उसका श्रेय देना, किसी को धन्यवाद देना, या फिर शायद अपनी गलतियों पर किसी को सॉरी बोल देना, बिना ये सोचे कि हमसे उम्र में बड़ा है या नहीं, या हमसे ताकत में, स्टेटस में, पैसे में, रुतबे में बड़ा है नहीं। बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेना, और किसी ने आपकी मदद की है, किसी ने आपके काम के लिए कुछ अच्छा किया है, तो उसे ज़रूर शेयर देना चाहिए। दोस्तों, मैं यश वट आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
4: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
4: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की

0: पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में JSSC CGL से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के

0: लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।

0: वो पेन हमको उधर के फ्लिक नहीं दिख रही,
1: वो तो पढ़ रही है।
2: मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहरा 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदामात की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिले भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती राबते पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: मुजविजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णो ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी

0: चाहरा 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माने प्रधानमंत्री।

0: के मयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के चौथे एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज़ है। हिमालयी खितों में तूरे खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेर जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तहानात को मनसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। तलबा ने तहकीकात के लिए हुकूमत को ये वार्निंग देते हुए 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर तहकीकात गैर मुनसिफाना या नाकाफी साबित हुई तो वह अपना एहतजाज फिर शुरू करेंगे। तलबा ने आज शाम रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एका चौक तक एक आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान हुकूमत के इस फैसले से 2628 उम्मीदवारों की तकरीरियां मुतासिर हुई हैं और उन्होंने अपनी नौकरियों और मुस्तकबिल के सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए झारखंड सेक्रेटेरिएट और प्रोजेक्ट भवन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने मुकर्रा अमल के जरिए इम्तिहान पास किया है और उन्होंने कहा कि अगर बेजाब्तगियां हुई हैं तो कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मुंतखब और मुकर्रर हुए उम्मीदवारों की तकरीरियां मंसूख की जाएं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मगरबी बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमेज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमेज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गोर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गोर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए न करें, बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी इस्तेमाल करें। सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा कि जब मालूमात तेजी से फैलती हैं तो इसे हमेशा मुस्तनद ज़राए के जरिए दुरुस्तगी, मोतबरियत और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज से मुलाकात के दौरान

0: बात कही। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के रोल पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसने शहरियों के साथ हुकूमत के राबते को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा किया है।
1: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजन्स रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द एंगेज बट ऑल्सो टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स ऑफ द पीपल।
0: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि मौसर बातचीत और मोतबर मालूमात दरख्शां और जवाबदेह जमहूरियत के अहम सुतून हैं। उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपने फैसलों में मुनसिफाना रहें, अपने तर्ज अमल में तहम्मुल बरतें और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखें। सदर जमहूरिया ने वाज़ेह किया कि लोगों की खिदमत करने की उन्हें तफवीज की गई जिम्मेदारी ईमानदारी, इंकसारी और फर्ज शनासी का तकाजा करती हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों खिदमत का मुश्तरक मकसद हुक्मरानी के मियार को बेहतर बनाना और लोगों की खिदमत करना है। ईरानी दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खलीज फारस के जुनूबी साहिल के ममालिक को अमरीकी अफवाज की मदद करने से खबरदार किया है और कहा है कि तेहरान मकामी फौजी अड्डों की सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने कहा कि इन अड्डों पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों की मौजूदगी और तैनाती इन मुल्कों की मालूमात के बगैर नहीं हो सकती। जनाब अब्दुल्लाही का इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब ईरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तवील कशीदगी के दौरान खत्ते में अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर निगरानी जारी रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने यह इंतबाह मुजाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन और तेहरान के मुतजाद बयानात के दौरान दिया है। 60 रोजा मुफाहमतनामा किसी वसीतर मुहिदे में तब्दील नहीं हो सका जिससे सिफारती कोशिशें मजीद पेचीदगी का शिकार हो गई हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही इस तरह का कोई प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप का यह बयान उनके दामाद और नुमाइंदे जैरेड कशनर के उस बयान से मुतजाद है जिसमें कशनर ने कहा था कि तेहरान के साथ रबते जारी हैं। इस दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने दावा किया है कि तेहरान को खुद सुपुर्दगी करवाने में नाकाम रहने के बाद अब वाशिंगटन मुजाकरात की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर नजरसानी चाहेगी जिसके तहत उसने साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामिया तिब्बी जांच के लिए एक अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आइंदा कुछ दिनों में जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को जामिया तिब्बी जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा बैन अल-अक़वामी अस्पताल मुंतकिल करने के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्काम को हिदायत दिए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अस्पताल में दाखिल किए जाने और अपने कुनबे से मिलने के सिलसिले में मुख्तलिफ अर्जदाश्तों की समाअत के दौरान यह हुक्म सुनाया। अदालत ने कहा कि यह हुक्म इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलतों तक रसाई की आईनी गारंटी के पेश नजर दिया गया है। हॉकी में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जारी FIH आलमी कप में आज इस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है। इस शिकस्त के साथ ग्रुप मरहले में पाकिस्तान की मुहिम खत्म हो गई है। मैच का दूसरा क्वार्टर इंतहाई दिलचस्प रहा जहां दोनों टीमों ने 9 मिनट के दौरान 4 गोल किए। इससे पहले भारत ने वेल्स को 3-1 से हराते हुए अपनी मुहिम का आगाज किया था। इससे पहले भारत को इंग्लैंड के हाथों 4-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ग्रुप डी से भारत और इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंच गए हैं जबकि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया है। आज गोल में पहले टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका पर 165 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था और लंच के बाद उसकी पूरी टीम 206 रन पर आउट हो गई। भारत के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथर ने भारत की जीत में इंतहाई अहम रोल अदा किया और उन्होंने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए और पहली मरतबा टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए जबकि ये उनका महज दूसरा टेस्ट मैच था। 24 साल भारतीय खिलाड़ी बैरून मुल्क 10 विकेट लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र स्पिन गेंदबाज भी बने। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी काबीना ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। उसने 4 रियासतों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट

शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जाब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती रबते पर जोर दिया है। और नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 गोल से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पज था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए। तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन, दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
2: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
4: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको आज के युग में

0: लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
2: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिबिल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने यह भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
0: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की एड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की एड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
2: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और FDs वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस

0: ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा। ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको, यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का, जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम, जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती है तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें। और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा। और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं, जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसको भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर, अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा की नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज, और फिर फॉलो अप, रिकवरी और मॉनिटरिंग, जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना, कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादातर तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहां आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो,

0: तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता, तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास। और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं
1: जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
0: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काम।
0: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा कि आईआईबीएम में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझ गए कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह का अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये है कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
0: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो

0: हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, दो दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही, तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा, और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विनी सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है, और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो अब वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोस्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है, बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो CBDT है या डिजिटल करेंसी या RTGS, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की

0: बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
1: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं। तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए, और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
0: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
2: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो ये है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
0: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
2: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि अगर हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
0: जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से आप चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
1: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय

0: संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: प्रस्तुत है नाटक हम सफर। लेखक हैं दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए,
1: अब भाई साहब अगर आपको तकलीफ ना हो तो।
2: हाँ हाँ बैठिए बैठिए, वैसे भी अगले स्टेशन पर उतरना है मुझे।
1: अच्छा अच्छा, धानपुर उतरेंगे आप?
2: हाँ।
1: क्यों भाई, तुम कहाँ जाओगे?
3: गोपालगंज।
1: लेकिन खड़े क्यों हो, यहीं बैठ जाओ यार।
3: जी।
1: क्या नाम बताया आपने?
3: मेरा नाम शेखर है।
1: अब तो हम दो दो हैं, ये भी गोपालगंज जाएंगे।
2: अच्छा वहाँ क्या?
1: अब भाई ऐसा है कि पढ़ाई मढ़ाई वालों के जो हाल देखे अपन ने, तो साहब मौका मिलते ही काम धंधे से लग लिए।
2: अच्छा।
1: अब इनका तो ये बताएंगे।
3: कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं।
2: अच्छा अच्छा, मेरी भी पोस्टिंग हुई है अभी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। नाम अनिल वर्मा।
1: मैं विनोद शर्मा। लगता है पढ़ने का बहुत शौक है आपको।
2: जी जी।
1: केस ऑफ द स्लीप वॉकर्स नीड्स।
2: जी हाँ, पेरी मेसन सीरीज का नॉवेल है, वेरी इंटरेस्टिंग।
1: अब भाई स्लीप वॉकर के बारे में है तो जरूर इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मुझे खुद स्लीप वॉकर के बारे में काफी कुछ पढ़ने का मौका मिला है।
2: अच्छा, क्या वाकई स्लीप वॉकिंग जैसी कोई चीज होती है? भाई मेरा तो साहब का ऐसे किसी नींद में चलने फिरने वाले से नहीं हुआ आज तक।
1: लेकिन साहब ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं मगर होते जरूर हैं। लीजिए, आपका स्टेशन भी आ गया।
2: अच्छा भाई विनोद बाबू, आपके साथ ये मुलाकात बड़े मजे की रही।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
1: चलो अच्छे मिल गए तुम, वरना गोपालगंज तक का लंबा सफर मुश्किल हो जाता भाई।
3: जाने को वहां जा तो रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर रहूंगा कहाँ।
1: क्यों, क्या दिक्कत है?
3: दिक्कत ही दिक्कत है विनोद भैया, कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो सस्ती भी हो और हर लिहाज से सुटेबल भी।
1: कहो तो मैं अपने मकान मालिक से बात करूं। अरे हाँ, मेरे रूम से लगा एक छोटा सा हिस्सा है, अब मकान वाले कायदे से दरवाजा मरवाजा लगवा दे और सफाई पुताई करा दे तो रहने लायक तो हो ही जाएगा।
3: हाँ, बिना दरवाजे के कोई कैसे रह सकता है भला।
1: अरे यार तुम भी कहाँ की बातों में लगे हो, ऐसी कौन सी बड़ी दौलत धरी है तुम पढ़ने लिखने वाले छोकरों के पास है? आगे पीछे दरवाजे की भी जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है, बोलो क्या कहते हो?
3: ठीक है भैया, बस कम से कम पे मान जाए तो अच्छा होगा।
1: अरे पटा लूंगा ना, चेयर अप यार। है
4: शिखर,
1: क्या बात है शिखर?
3: कुछ नहीं।
1: कुछ तो है, अरे बताओ ना यार क्या बात है।
3: अपने दुखड़े को रोकर आपको क्यों नाहक परेशानी में डालूं?
1: कमाल करते हो यार, भैया भी कहते हो और पराया भी समझते हो।
3: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
1: बताओ क्या बात है, बताओ।
3: एक उलझन हो तो बताओ। अचानक कितनी मुसीबतों में घिर गया हूं मैं, माँ की दिनों दिन बेकाबू होती बीमारी, ब्याज दर ब्याज, कर्ज की रकम, किसी भी दम पुश्तैनी मकान को निगलने को तैयार, भैया की अच्छी भली नौकरी, अब शरीर साजिश की भेंट चढ़ गई। मैंने चाहा पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, लेकिन भैया ने डांट डपट कर मुझे वापस गोपालगंज रवाना कर दिया।

0: मैं भी उस पार्ट टाइम नौकरी के भरोसे वहां जा रहा हूँ।
1: वाकई एक साथ इतनी सारी मुसीबतें, फिर भी भाई हिम्मत मत हारना।
0: और चारा भी क्या है, दिन इधर उधर काम की तलाश में और रात आंखों में कट जाती है। भरपूर नींद कैसी होती है शायद भूल ही चुका हूँ।
1: तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह रात रात भर जागना भाई अच्छा नहीं है। ये
0: क्या फर्क पड़ता है भैया?
1: नहीं मेरे भाई, इंसान को नींद के मामले में कतई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
0: वैसे आपको पक्का भरोसा है मकान मालिक तैयार हो जाएगा?
1: अरे 100 बार यार, हम भी उसके काम आते हैं, बल्कि यूं कहो हमारे बिना उसका काम ही नहीं चलता है। अब जाओ लपक के हाथ धोआओ, खाना निकाल रहा हूँ, और गोपालगंज आने पर तुम मेरे साथ ही चलना, ठीक है?
0: जी भैया।

0: अरे भाई शेखर, अरे यार बात बन गई यार। मैं तो कमरे की बात करने गया था, लेकिन बड़े मियाँ तो कमरे के साथ साथ तुम्हें हर महीने 300 रुपए देने को तैयार हो गए हैं। घंटा डेढ़ घंटा रोज का काम है और इस हिसाब से रकम बुरी नहीं है। ट्यूशन,
1: लेकिन क्या करना होगा मुझे?
0: उनकी एक अदद भतीजी है, इंटर कर रही है, थोड़ी अंग्रेजी वंग्रेजी पढ़ा देना उसे, हो गया। समझो कमरे का किराया उसी में एडजस्ट हो जाएगा। कहो कैसी रही है?
1: भैया, आपने तो मेरी मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी।
0: तुम सोचते बहुत हो यार। नाउ फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट रिलैक्स, ओके?
2: शेखर, अरे ओ शेखर,
1: दीपक दादा,
2: कब आए भाई?
1: नमस्ते दादा।
2: नमस्ते।
1: मुझे आए तो महीना भर हो गया है।
2: अच्छा, तो सुना, हॉस्टल में ही हो ना?
1: मेरा दूसरी जगह बंदोबस्त हो गया है।
2: अरे कहाँ?
1: एक साहब हैं, शायद आप जानते हो, विनोद शर्मा जी। आते वक्त ट्रेन में मुलाकात हो गई थी, उन्होंने ही करा दिया, जहां वो खुद रहते हैं, खन्ना साहब के मकान में।
2: खन्ना? अच्छा, वो खन्ना, जानता हूं उसे। तुम्हारे मकान मालिक खन्ना और हमारा एक जमाने में बड़ा साथ रहा है भाई। अरे वो तो बाद में उसने गलत लाइन पकड़ ली तो अपन अलग हो गए।
1: गलत लाइन मतलब?
2: अरे वही जुआ, सट्टा, ड्रग सप्लाई। पता है वो खन्ना खुद को उस हवेली का मालिक बताता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी दरअसल उसकी भतीजी गीता खन्ना की मिल्कियत है। भाई के मरने के बाद उस बेचारी अकेली बेसहारा लड़की का सरपरस्त बन के डटा हुआ है, समझे कि नहीं?
1: अच्छा,
2: यूं तो गीता के साथ विनोद की बढ़ती नजदीकियां खन्ना को पसंद नहीं है, लेकिन खुल के कुछ बोल नहीं पाता है, समझे कि नहीं?
1: जी, अच्छा, चलता हूँ।
2: हाँ हाँ
1: नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
0: हाँ भाई शेखर, कैसा लग रहा है यहाँ? कोई दिक्कत परेशानी?
1: नहीं भैया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो?
1: जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि नींद जरा देर में आती है, लेकिन सोता तो हूं, और एक बार जो आंख लगती है तो बस ऐसी लगती है कि समझिए घोड़े बेचकर सो जाता हूं।
0: अच्छा, अब तुम कहते हो तो ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन वो आवाजें।
1: जी आप किन आवाजों की बात कर रहे हैं? अरे बताइए ना भैया, बताओ ना प्लीज।
0: अब तुम इतना कहते हो तो फिर बताना ही पड़ेगा। दरअसल कभी कभी देर रात गलियारे में किसी के चलने फिरने की आवाज सुनकर मेरी नींद उजड़ जाती है।
1: जी लेकिन कौन आ सकता है यहाँ?
0: वही तो, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
1: हैरत की बात है, मुझे ऐसा कभी महसूस क्यों नहीं हुआ। भैया भैया, कहीं ऐसा तो नहीं स्लीप वॉकिंग के किस्से पढ़ते पढ़ते आपको कुछ वहम सा हो गया?
0: अरे नहीं, वहम और मुझको, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहरहाल मामला जो भी हो, देर सवेर सामने तो आ ही जाएगा।

0: क्या ठाठ, हमारी अच्छी भली नींद खराब करके जनाब मजे से खर्राटे भर रहे हैं। शेखर, ए शेखर, अबे उठो भी यार।
1: कौन है? अरे विनोद भैया, आप कब, क्या बात है
0: यार? कल रात क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हें डिक्शनरी ही चाहिए थी तो वैसे ही उठा ले जाते, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी?
1: क्या? मैं डिक्शनरी? कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं भैया?
0: अरे यार, वो रही मेरी डिक्शनरी आपकी मेज पर।
1: अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकला तो आपके कमरे में कैसे पहुंच गया मैं?
0: फिलहाल कुछ कहने से तो फायदा नहीं है, बेहतर है अभी इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलता हूं।
1: जी क्या सचमुच मैं रात को उठकर? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डिक्शनरी, वो यहां कैसे? कहीं नींद में चलने की बीमारी का? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, होशियार तो रहना ही होगा।
2: सर, सर एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
1: नहीं नहीं
2: कल रात आप चर्च वाले कब्रिस्तान गए थे?
1: क्या, किसने बताया तुम्हें? किसने बताया?
2: कुछ लोगों ने देखा होगा, विनोद जी बता रहे थे।
1: बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। पूछता हूं अभी जाकर उनसे।
2: सर सुनिए तो, सुनिए तो सर। सर
0: भाई शेखर, उठिए, ये लीजिए भाई। रात भर उसमें भटकते रहे हैं आप।
1: हैं? क्या बात कर रहे हैं आप भैया, मैं तो बिस्तर से उठा ही नहीं, आप क्यों बिला वजह?
0: बिला वजह मतलब रात की बात तुम्हें बिल्कुल याद नहीं?
1: कोई बात हो तब ना।
0: अच्छा, यानी जो मैंने आंखों देखा वो झूठ? तो फिर सामने कुर्सी पर सूखने के लिए फैला वो कंबल जिसे ओढ़कर चांदनी रात का लुत्फ उठा रहे थे आप, अब भी नम क्यों हैं? और वो आपके जूते, उन पर गीली मिट्टी के ताजा निशान क्यों कर हैं, बताइए भाई।
1: मगर
0: अब भाई ये मत कहना कि मैं कमरे से बाहर गया ही नहीं।
1: भैया क्या मैं जानबूझकर इनकार कर रहा हूं?
0: नहीं, तुम इनकार सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें वो वाकया याद ही नहीं। और ये अपने आप में स्लीप वॉकिंग का एक बहुत बड़ा सिम्टम है।
1: स्लीप वॉकिंग? तो क्या वाकई आपको यकीन है कि मैं नींद में चलता हूं?
0: हाँ, क्योंकि यही हकीकत है। एक के बाद एक कितने ही वाक्य होते गए हैं, मैं तुम्हें हमेशा चेताता रहा। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेहतर है मेरी बात मानो, वक्त रहते इस बीमारी का इलाज करा लो।
1: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: अब भाई देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, आते ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास चलकर कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय।
2: सर, सर।
1: हाँ हाँ गीता, बताओ क्या बात है?
2: वो चाचा ने कहलाया है, कैसे बताऊं?
1: क्या कहलाया खन्ना साहब ने?
2: दरअसल आपकी नींद में चलने वाली बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गए हैं और बोले कल को कोई हादसा हो गया तो परेशानी उन पर भी आ सकती है।
1: तो क्या चाहते हो, कमरा खाली कर दूं?
2: सर आज ही।
1: आज ही? उनसे कहो कमरा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन विनोद भैया के लौटने पर, उससे पहले हरगिज नहीं।
2: सर ये जवाब सुनकर तो मुझ पर ही भड़क उठेंगे वो।
1: डोंट वरी, मैं खुद जाकर खन्ना साहब से बात करता हूं। खन्ना साहब का खून हो गया, खन्ना साहब का खून हो गया। अरे ये देखो खून के निशान,
3: ये निशान तो उस कोठरी की तरफ जाते दिख रहे हैं।
4: चलो उधर चलो, उधर चलो, चलो।
1: अरे अंदर कोई है क्या?
3: हाँ, कोई सो रहा है,
1: सो रहा है कोई।
3: अरे

0: अरे भाई उठो भाई, अरे उठो भाई उठो,
1: अरे उठ जा भैया, खून हो गया यार।
0: उठो,
2: तू सोया पड़ा।
3: अरे क्या है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए, कैसा खून, किसका खून?
0: हटो, पीछे हटो, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। निकलो बाहर, बाहर निकलो।
4: चलो भाई बाहर, चलो भाई।
5: देख लो साहब, वहां से लेके जहाँ ताला खून ही खून के निशान है।
0: हाँ सब दिख रहा है हमें। कौन हो तुम?
6: जी मैं शेखर हूँ, खन्ना साहब का किराएदार।
0: तो वो खून आलूदा कपड़े तुम्हारे हैं, और ये कुल्हाड़ी भी।
6: कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये सब क्या है, कपड़े, खून, कुल्हाड़ी, यहाँ कैसे? मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब।
0: हाँ आ जाएगा, जरा थाने चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए हथकड़ी लगाओ इसे।
6: नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज।
7: अरे हाँ हाँ, खून इसी ने किया है।
8: अरे आओ, कत्ल और वो भी नींद में, फालतू की बात है।
9: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, गवाह पेश कीजिए।
6: जज साहब, मुलजिम खन्ना साहब का किराएदार था। खन्ना साहब ने इन्हें फौरन मकान खाली करने को भी कहा था, लेकिन साहब इन्होंने खूब हिला हवाला किया और दोनों में खूब कहा सुनी भी हो गई। साहब इन्होंने खन्ना साहब को देख लेने की धमकी दी और उसी रात खन्ना साहब का कत्ल हो गया।
5: हाँ साहब, ये खून सनी कुल्हाड़ी और कपड़े मेरे सामने मुलजिम की कोठरी से बरामद हुए हैं। जब्ती नामे पे मेरे दस्तखत है, ये रहे।
10: चाचा का खून होने से पहले शेखर सर का उनसे झगड़ा हुआ था, उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी, ऐसा विनोद जी से ही सुना था मैंने।
9: ऑर्डर ऑर्डर, गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर अदालत मुलजिम शेखर को जगदीप खन्ना का कातिल करार देते हुए 14 बरस कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है।

कहते पा मुशक्कत सजा उस गुनाह की जो जो मैंने किया ही नहीं, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते देते कैद खाने की दीवारों से सर टकराता हूँ, लहूलुहान होता रहा हूँ मैं।

सजा की म्याद पूरी हुई, मैं रिहा हो गया। लेकिन लेकिन अब जब खुद मेरी अपनी जिंदगी ही बेमानी होके रह गई, ये रिहाई क्या मायने रखती है मेरे लिए? कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, फिर भी चलना एक मजबूरी है। फिर क्यों ना वहीं चलूं जहां से बर्बादी का यह लंबा सफर शुरू हुआ था।

0: क्यों भैया, क्या गोपालगंज वाली गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी?
1: हाँ, यहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: आप गोपालगंज जाएंगे? मैं भी इसी गाड़ी से चल रहा हूँ।
0: अच्छा, आप भी वहीं जाएंगे?
1: नहीं नहीं, उससे दो स्टेशन पहले हरिपुर उतरूंगा। आप शायद गोपालगंज में ही रहते होंगे।
0: कभी रहा करता था, मुद्दत हुई वो शहर छूट गया।
1: क्यों, ऐसी क्या बात हुई?
0: लंबी कहानी है, लगता है गाड़ी आ रही है। क्या गाड़ी पकड़ने में मदद करेंगे? नजर कमजोर हो गई, अक्सर

हाँ, चिंता मत करो, आराम से बिठा दूंगा। इस डब्बे में थोड़ी जगह है, आओ यहीं बैठते हैं।

0: यूं ट्रेन में ही अचानक एक ऐसा ही तो इत्तेफाक था।
1: लगता है जरूर जिंदगी में किसी भयानक हादसे के शिकार हुए हैं आप।
0: शिकार? जाने भी दीजिए, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, अब आपके आगे उसका रोना क्या रोना।
1: फिर भी भैया, दुख बांटने से दिल का बोझ कुछ कम तो होगा, शायद कोई मसलहत हो।
0: वो शख्स, ना वो मिलता ना उसके कहे पर मैं सिर छिपाने उस मनहूस कोठरी में जाकर ठहरता। पूरे 14 सालों तक यही सवालात झोंक बनकर मेरे वजूद को कतरा कतरा चूसते रहे, खोखला करते रहे मुझे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा थी ये? किस गुनाह की?
1: गुनाह? कैसा गुनाह भैया?
0: शायद कभी सुना हो, बरसों पहले गोपालगंज में एक कत्ल हुआ था, और कत्ल भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिसे नींद में चलने की बीमारी थी।
1: हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। उन दिनों वो मामला काफी चर्चा में रहा था, अपनी तरह का अनोखा मामला जो था। बड़ी तादाद में लोग मामले की कार्रवाई देखने कोर्ट जाया करते थे, अब मैं भी जाता था। हाँ, तभी आपको देखकर लग रहा था कहीं तो देखा है, पर ठीक से याद नहीं कर पाया। तो क्या वो आप ही?
0: हाँ, लोगों के ख्याल और अदालत के फैसले के मुताबिक चाहो तो आप भी मुझे गुनाहगार मान लो, लेकिन सच तो यह है कि वो खून मैंने नहीं किया।
1: बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, और वो आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है।
0: अब बताने और ना बताने से क्या फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल, शुरुआत एक अजीब इत्तेफाक से हुई। यही ट्रेन थी और रूट भी यही था। मैं गोपालगंज जा रहा था और वो शख्स भी। सफर के दौरान हमारी पहली मुलाकात थी।
2: क्यों भाई, तुम कहाँ जाओगे?
3: गोपालगंज।
2: लेकिन खड़े क्यों हो? यहीं बैठ जाओ यार।
3: जी।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: मेरा नाम शेखर है।
2: अरे भाई शेखर, अरे आप बात बन गई यार।
1: भाई रात भर उसमें भटकते रहे आप।
3: हैं? क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मैं तो बिस्तर से उठा ही नहीं, आप क्यों बिला वजह?
2: बिला वजह मतलब रात की बात तुम्हें बिल्कुल याद नहीं?
4: ए, हथकड़ी लगाओ इसे।
3: नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज।

0: तो भैया ये रही मेरी राम कहानी, कैद की वो बेपनाह लंबी म्याद, जैसे मेरा वजूद ही निकल गई पथरीली दीवारों को ताकते ताकते, जाने कब आंखें भी पथरा गई।
1: आपके साथ वाकई बहुत भारी अन्याय हुआ है, जितना अफसोस जाहिर करूं कम है।
0: जो होना था हो चुका, अब तो वक्त के साथ काफी कुछ सहने की आदत हो चुकी है।
1: फिर भी एक बात जानना चाहता हूँ, क्या उस शख्स विनोद के अलावा कभी किसी और ने भी आपको नींद में चलते देखा या कभी देखने की बात कही?
0: नहीं, हर मर्तबा सिर्फ उन्हीं ने देखा और टोका।
1: क्या ये अपने आप में एक अजीब इत्तेफाक नहीं था?
0: हो भी सकता है।
1: और उनकी बात पर कभी शक भी नहीं हुआ?
0: शक उनकी बात पर? उल्टे उनके मुंह से बार बार ये सुनकर खुद मुझे शुभा होने लगा था, क्या वाकई नींद में चलने की बीमारी का शिकार हूं?
1: मुमकिन है नींद में चलने वाली कहानी उन्होंने झूठ मूठ गढ़ ली हो।
0: नहीं नहीं, भला ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होने वाला था?
1: किसे पता, क्योंकि इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है, क्या सचमुच विनोद नाम का वो शख्स जैसा उसने आपसे कहा था वाकई उस दिन शहर से बाहर चला गया था? क्या ये मुमकिन नहीं, ठीक कत्ल की रात सबकी नजरों से छिपा वो मौकाए वारदात के इर्द गिर्द मौजूद रहा हो?
0: तुम आखिर कहना क्या चाहते हो?
1: जाने भी दो, अब मेरा

0: वेकेशन आ रहा है, तो क्यों ना सफर के साथ ये बात भी यहीं खत्म कर दी जाए।
1: लेकिन तुम इस तरह बगैर जवाब दिए नहीं जा सकते।
0: अच्छा ठीक है, बाकी बात हम खिड़की पर से कर लेते हैं।
1: ठीक है।
0: तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे उस विनोद ने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा। न उसने कभी तुम्हें नींद में चलते देखा और ना ही वो उस रोज कहीं बाहर गया था। कत्ल की रात वो वहीं मौजूद था।
1: ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
0: मुझे अपनी बात कहने दो। क्या तुम्हें मालूम है खन्ना के कत्ल के बाद उसने गीता से शादी कर ली? हवेली को बेचकर दोनों कहीं और जाकर बस गए।
1: क्या वाकई तुम उसके बारे में इतना कुछ जानते हो?
0: मुझसे ज्यादा भला उसे कौन जानेगा। सुनो शेखर, मैंने तुमसे एक झूठ जरूर बोला कि मैं तुम्हारे मुकदमे की कार्रवाई में कभी मौजूद रहा। सच तो यह है कि उन दिनों क्या उसके कई बरसों बाद तक मैं उस तरह फटका भी नहीं।
1: झूठ बोलने की वजह?
0: अब गाड़ी चल पड़ी है तो बता ही दूं। ट्रेन में चढ़ने से पहले तुमने कहा था नजर कमजोर हो गई, अक्सर धोखा दे जाती है। सच तो यह है तुम्हारी नजर हमेशा ही धोखा खाती रही। उसने तुम्हें महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अपने हम सफर को न तुमने तब पहचाना था और न अब।
2: तो विनोद, ठहर जा फरेबी, कातिल, दगाबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।

अभी आप सुन रहे थे नाटक हम सफर। लेखक थे दिनेश राय। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: विनोद बालेंद्र सिंह कुशवाहा, अनिल अरविंद बिलगनिया, दीपक स्मित मेहता, गीता परी जोशी, पहले गवाह तनवीर अहमद, दूसरे गवाह मनोज राजानी, इंस्पेक्टर अजय सिंह पाल, जज अनिल मुंशी और शेखर योगेश उमाठे। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढौंडियाल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुनील मुखर्जी का सरोद पर बजाया राग रागेश्री। तबले पर आपके साथ संगत की है असित सेन गुप्ता ने।

राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील मुखर्जी का सरोद पर बजाया राग रागेश्री। तबले पर संगत की थी असित सेन गुप्ता ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे

0: संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gaur today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. the US involved.